0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

कल्पयामि हम आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि यम वायवात्मने धूपं कल्पयामि रम वन्यात्मने दीपं कल्पयामि वम अमृतात्मने अमृतं कल्पयामि सम सर्वात्मने सर्वोपचारान् कल्पयामि ओम श्री शिवाय नमः।

चिदेकरसम्पूर्ण श्रीशिवाय नमः। ॐ श्रीमहेश्वराय नमः। ॐ श्रीशिवकाम्यम्बासनाथाय

पृथिवी अन्तरिक्षं च विबाधसे विश्वकर्मात्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यजस्वतीं पृथस्वतीं अन्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षं दृग्ञः अन्तरिक्षं माहिज्ञासीः विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय वायुष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्त्याच्छर्दिशा शन्ता मे नतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद राज्ञासि प्राची दिग्विरालासि दक्षिणादिक्सम्रालासि प्रतीची दिक्स्वरालस्युदीची दिगधिपत्न्यसि बृहति दिक् विश्वकर्मा त्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम् विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ वायुष्टेऽधिपतिस्तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद नभश्च नभ

0: மகாமண்டலேஸ்வர் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: அப்னே கியே இஸ் ஜகத் கி ரச்சனா, துக்காலயம் அசாஸ்வதம். சுகாலயம் சாஸ்வதம் கி ஜகத் கி ரச்சனா கியூ நீ கி? சுகாலயம் கா அர்த்த கியா ஹோதா ஹை? ஜஹா சுக மிலே உஸ்கா நாம் சுகாலய, ஜஹா போஜன் மிலே உஸ்கா நாம் கியா ஹை? போஜனாலய. ஜஹா வித்யா படனே கோ மிலே உஸ்கா நாம் கியா ஹை? ஹா, ஜஹா ஔஷதி மிலே ஔஷதாலய. ஆலய மனே கஜானா, ஆலய மனே பிரச்சுர மாத்திரா மே ஜோ வஸ்து ஜஹா மிலே உஸ்கா நாம் கியா ஹை? ஆலய. ஔஷதி ஜஹா மிலே வோ ஔஷதாலய, போஜன் ஜஹா மிலே வோ போஜனாலய, புஸ்தக் ஜஹா மிலே புஸ்தகாலய. இசி பிரகார துக்க ஜஹா மிலே, கா மிலே துக்க? சம்சார் மே. பகவான் நே பனாயி ஹை துக்காலய ஜகத். மஹாராஜ் சுகாலய க்யூ நீ பனாயா, துக்காலய க்யூ பனாயா? போலே தோ சீஜ் ஹை பேட்டா, இமம் பிராப்யம் பஜஸ்வமா. சுகாலய மே ஹூ, துக்காலய ஜகத் ஹை. துமக்கோ சுகாலய சாஹியே தோ, சுகாலய சாஹியே தோ மேரே ஆஸ்ரய மே ஆவோ, मुझे प्राप्त कर लो, मेरे शरण में आओ, मेरे चरण में आओ, मुझे प्राप्त करो. और यदि मुझे प्राप्त नहीं करते हो, जगत को प्राप्त करते हो, तो फिर दुखालयम. देखो, हमने जगत बनाकर और जगत में साइन बोर्ड लिख दिया है, जगत बनाया और जगत में साइन बोर्ड भी रख दिया है. साइन बोर्ड क्या रखा है? दुखालयम. जगत बनाकर हमने वो साइन बोर्ड न लिखा होता, न रखा होता, तो हमारी गलती थी. तुम साइन बोर्ड पढ़ते नहीं हो. साइन बोर्ड पढ़े बिना भोजनालय में पुस्तक लेने जाओ तो क्या कहेगा वो? भोजनालय का मालिक क्या कहेगा वो? भोजनालय में पुस्तक खरीदने जाओ, मुझे गीता की एक पुस्तक दे दो, रामायण की एक पुस्तक दे दो, तो दुकान वाला क्या कहेगा, भोजनालय वाला क्या कहेगा? अरे बाहर साइन बोर्ड नहीं पढ़े हो? ये तो भोजनालय है, पुस्तकालय थोड़ी है. पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाऊं, कहेगा कि नहीं, बोलो. इसी तरह पुस्तकालय में जाकर तुम कहोगे कि हमको बढ़िया रसपूड़ी, श्रीखंड वासुदी, पकौड़ा, पापड़, अचार की एक थाली भोजन दे दो, वो क्या कहेगा? साइन बोर्ड पढ़े बिना घुस गए अंदर? बाहर इतना बड़ा साइन बोर्ड लिखा है, ये भोजनालय है या ये पुस्तकालय है, और तुम यहां आके भोजन मांगते हो? तो तुम क्या उत्तर देते हो? हां सॉरी, हां हमने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा है. इसके अलावा और क्या उत्तर है? मुझे लगता है जगत में प्रवेश करने से पहले हमने भी जगत के बारे में जो साइन बोर्ड था वो नहीं पढ़े. और भगवान ने जगत बनाया और जगत बनाकर साइन बोर्ड रख दिया था, अनित्यम असुखम दुखालयम अशाश्वतम. लेकिन हम साइन बोर्ड पढ़े बिना जगत में घुस गए, परिणाम अब चारों तरफ से दुख ही दुख मिल रहा है, तो पश्चाताप करते हैं कि ये क्या हुआ गया. तो भगवान जवाब देंगे, तुम साइन बोर्ड पढ़े बिना घुसे हो, इसीलिए

0: ही समस्या आएगी। फिर हमको सुख चाहिए, सुखालय, बोले भजस्व माम अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। सुखालय चाहिए, सुख चाहिए तो तुम मेरा भजन करो, क्योंकि इधर सुखालय इधर दुखालय, तुमको किधर जाना है। तो जिसने साइन बोर्ड पढ़ ली वो तो सुखालय इधर है करके परमात्मा के तरफ चल पड़ा, और जिसने साइन बोर्ड न पढ़ी है वो जगत के तरफ चला तो दुखालय में फंस गया। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे पशुपते, अपने जगत की रचना क्यों की? वो श्रुति है, एको हम बहुश्याम प्रजाये या, मैं अकेला हूं, मैं अनेक होकर देखूं तो कैसा होता हूं, कैसा लगता है। अकेले रहने का आनंद तो मुझे आ रहा है, अनेक होकर खेलने की मजा जो चाहिए मुझे वो अकेले बैठने में नहीं आ रहा है। अकेले बैठने का आनंद जो आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन अनेक होकर खेलने की मजा है वो तो अनेक हुए बिना वो आएगा नहीं वो मजा। एको हम बहुश्याम प्रजाए, इस मायावृत्ति से उसने संकल्प करके एक से अनेक हो गया। एक से अनेक हो गया। श्रुति आगे कहती है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। अनेक होने के बाद वह जितने भी हुए हैं एक से भिन्न, उस सभी में अस्ति भाति और प्रिय के रूप में वह अनुप्रविष्ट हुआ है। ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, वैसा नहीं है जगत। परमात्मा ने जगत बनाकर अपने आप सातवें आसमान में बैठकर तमाशा देखता होता तब तुम्हारा कहना यह ठीक था कि परमात्मा ने दुखमय जगत बनाकर फंसा दिया हमको और अपने आप सातवें आसमान में बैठकर तमाशा देख रहा है। कुछ लोग होते हैं किसी के झगड़ा लगा देते हैं और दो आदमी झगड़ते रहते हैं, वो अपने दूर बैठकर तमाशा देखता है, उसको तमाशावीन बोलते हैं। ऐसे भी होते हैं संसार में तमाशा देखने वाले, उनको तमाशा देखने में मजा आता है। तमाशा करने की अपेक्षा तमाशा देखने में मजा आता है। लेकिन परमात्मा की विशेषता क्या है? जगत की रचना करने के बाद वो सातवें आसमान में बैठकर तमाशा नहीं देख रहा है। तमाशा करने वाला खुद बन गया। जगत रचना करके तमाशा करने वाला खुद बन गया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, झगड़ने वाला भी वो खुद बन गया, झगड़ा लगाने वाला भी वो खुद बन गया, और तमाशा देखने वाला भी वो खुद बन गया। क्योंकि इन सब के बिना जगत का मजा ही नहीं है। समझे कि नहीं? इन सब के बिना जगत का मजा ही नहीं है। जगत का मजा इसी बात पर है, एक तरफ झगड़ा भी करो एक तरफ प्यार भी करो, इसी में जगत का मजा है। वो बढ़िया बढ़िया रस और खीर पूरी खाओ, थोड़ा सा मिर्ची का टुकड़ा भी चबाना जरूरी है। बोले मिर्ची क्यों खा रहे हो रस पूरी खाते समय? बोले महाराज मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा, रसपुरी के सामने मिर्ची क्या मतलब है? बोले जरा स्वाद बढ़ेगा, जरा स्वाद बढ़ेगा। यही तो संसार का स्वाद है भैया, यही तो जगत का स्वाद है ना। क्रीडार्थम सृजति प्रहम, इस रहस्य को नहीं जानते तब हमारे लिए समस्या बन जाता है ये जगत। जो इस रहस्य को जानता है उसके लिए जगत समस्या नहीं बनता है। क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचम अखिलम, सबसे पहले परमात्मा ने जगत रचना करने के लिए पांच वस्तुओं का निर्माण किया। उन पांच वस्तुओं के माध्यम से बना हुआ जगत को प्रपंच कहते हैं। पांच का खेल है ये जगत, इसलिए ये प्रपंच है। अपंचीकृत पंच तन्मात्राओं का खेल सूक्ष्म सृष्टि है, सूक्ष्म शरीर है। पंचीकृत पंच तन्मात्राओं का खेल स्थूल जगत है, स्थूल शरीर है। चाहे स्थूल प्रपंच हो, पांचों का खेल है, पंचीकरण हुआ। चाहे सूक्ष्म जगत हो, पांचों का खेल है अपंचीकरण से। तो स्थूल सूक्ष्म ये सारा प्रपंच, प्रपंच का अर्थ पांच का खेल बस। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचयिता या अधम शरीरा इत्यादि इत्यादि प्रपंच की उदाहरण है। प्रयोजन, सृष्टि रचना का प्रयोजन बताया पहले, क्रीडार्थम सृजसी अखिलम प्रवचम किम सृजसी भवान। विश्व प्रपंच की रचना आपने क्यों की? भगवान उत्तर दे न दे, शंकराचार्य जी खुद उत्तर दे रहे हैं, क्रीडार्थम सृजसी, खेलने के लिए अपने ये प्रपंच को बनाया है। इसीलिए क्रीडा मृगास्ते जना, जना संसार में जितने भी जीव हैं जो अनेक हुए हैं, संसार में जितने भी जीव हैं जो अनेक हुए हैं ये जनाः ते क्रीडा मृगाः, तुम्हारे खेल के लिए ये क्रीडा पशु हैं, क्रीडा पशु, क्रीडा मृग हैं, खेल के पशु हैं। देख लो आजकल फुटबॉल का खुमार चढ़ रहा है विश्व में। एक आदमी फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉल का मजा आएगा एक आदमी को? कितने खिलाड़ी हैं खेल रहे हैं, खेलने वाले खेल रहे हैं, हारने वाले हार रहे हैं, जीतने वाले जीत रहे हैं। हारने वाला दुखी होता है और जीतने वाला प्रसन्न होता है। खेल में दो भाव होते ही हैं, खेल में दो भाव होते ही हैं, ये अनिवार्य है। क्योंकि दो पक्ष होते हैं, खेलते तो दोनों जीतने के लिए, वो भी खेलता है जीतने के लिए, वो भी खेलता है जीतने के लिए। लेकिन एक हारना अनिवार्य है कि नहीं बोलो? खेलते दोनों पक्ष हैं, दोनों जीतने के उद्देश्य से खेलते हैं, लेकिन खेल तभी संभव होगा दोनों में से एक हारना अनिवार्य है, हारना पड़ेगा। हारना नहीं चाहता, हारना पड़ता है। हारना नहीं चाहता और हारना पड़ता है, नहीं तो खेल बनेगा ही नहीं। तो जब वो हारता है तो फिर दुखी हो जाता है। दुखी होने के लिए खेलने गया था वो, हारने के लिए खेलने गया था। खेलने वाला खिलाड़ी टीम ये जानता है कि नहीं, एक पक्ष को हारना जरूरी है, हारने वाला पक्ष दुखी होगा ये जानता है कि नहीं, खिलाड़ी जानते हैं कि नहीं, ये बात जानते हैं कि नहीं अच्छी तरह। लेकिन हर खिलाड़ी क्या खेलता है, उसको हराऊंगा मैं जीतूंगा। हर खिलाड़ी खेलते समय में किस भावना से खेलता है बोलो, उसको हराऊंगा मैं जीतूंगा, उसको हराऊंगा मैं जीतूंगा, इसी भावना से पूरी तरह खेलता है। हारने वाला भी जब तक नहीं हारेगा, भावना क्या रहती है उसकी, उसको हराऊंगा मैं जीतूंगा। लेकिन नियम ऐसा बन गया है कि एक को हारना जरूरी है, एक को जीतना जरूरी है, और जिस समय वह हारता है तो समस्या क्या होती है, समस्या मन में सोचा था, मैंने सोचा था, प्रयत्न किया था जीतने के लिए, मेरे संकल्प करते हुए भी, मेरे इच्छा होते हुए भी, मेरे प्रयत्न करते हुए भी, मेरे कोशिश करते हुए भी मैं जीत नहीं पाया, मैं हार गया, उसको सत्य रूप में स्वीकार करेगा तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अप्रत्याशित रूप से मैं हारा बोलता है वो, जबकि अनिवार्य था हारना, था कि नहीं बोलो, जबकि हारना अनिवार्य था, एक पक्ष का हारना अनिवार्य था। लेकिन जो हारने वाला है वो कहता है कि अप्रत्याशित रूप में मुझे हारना पड़ रहा है, उसको हारना चाहिए था, मैं हार गया, मैं जीत नहीं पाया, मैं हार गया, उसने मुझे हराया, दुख का कारण हुई, सृजना हो गई। खिलाने वाला भी एक को जिताने और एक को हराने के लिए ही खिलाता है कि नहीं बोलो, खिलाने वाला भी एक को जिताने और एक को हराने के लिए ही खिलाता है, खेलने वाला भी जानता है कि एक को हारना पड़ेगा, लेकिन वो हारने वाले में से मैं हूं ऐसा नहीं मानता है, मैं जीतने वालों में से होना चाहिए, ये उसके दुख का कारण है। बस बहुत सुंदर भाव है इस श्लोकों में, इस समर्पण भाव है इसमें समर्पण, पूरी तरह समर्पण भाव है। क्रीडार्थम सृजसि प्रपंचमखिलम्, क्रीडा मृगास्ते जना, यत्कर्माचरितं मया च भवत, प्रीत्यै भवत्येव तत्। मया, ध्यान देना, यहीं पर महत्व रहस्य छुपा है। भक्त की यह दृष्टि है, वो दृष्टि हमारी जब तक नहीं बनती हम भक्त की कोटि में नहीं जाएंगे। हम अज्ञानी संसारी कर्ता भोक्ता मूर्खता के जीवन में रहें, कोटि में रहेंगे, भक्त की कोटि में तो हम नहीं जाएंगे। भक्त की कोटि में जाने के लिए ये दृष्टि, ये भाव हृदय में आना जरूरी है। यत कर्माचरितम मया च, हे पशुपते, मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं, मेरे द्वारा जो कुछ भी आचरण होता है, मेरे द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है, जागृत से लेकर शयन पर्यंत और शयन से लेकर जागृत पर्यंत, आसुप्तेरा मृते कालम, जागृत से शयन पर्यंत और शयन से जागृत पर्यंत, जो कुछ भी मेरे द्वारा चेष्टा होती है, कर्म होता है, क्रियाएं होती हैं, वे सब के सब भवत प्रीत्यै भवत्येव तत्, वो सब आपकी प्रसन्नता के लिए होते हैं, आपके प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप खिलाड़ी हैं, खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और मैं खिलौना हूं। मैं क्या हूं? खिलौना हूं, और आप क्या हैं? खिलाड़ी हैं। खेलने के लिए आपने मुझे खिलौने के रूप में निर्माण किया है। विडंबना यह है कि खिलौने के रूप में उत्पन्न हुआ हुआ यह खिलौना खिलाड़ी बन गया। विडंबना यह हो गई, था खिलौना, बन गया खिलाड़ी। और खिलौना कहीं खिलाड़ी बन सकता है? खिलौना खिलाड़ी बन सकता है? खिलौना तो हमेशा खिलौना ही रहेगा, खिलाड़ी तो खिलाड़ी ही रहेगा। खिलाड़ी खिलौना नहीं बन सकता, खिलौना खिलाड़ी नहीं बन सकता। और हमारी विडंबना यह है कि परमात्मा ने हमें खिलौनों के रूप में निर्माण किया था, हम उस बात को भूल गए कि हम, हमारा विश्व सृष्टि में, विश्व प्रपंच विश्व सृष्टि में परमात्मा के दृष्टि से मैं एक खिलौना मात्र हूं। परमात्मा ने मुझे खिलौने के रूप में निर्माण किया है। तब तो खिलौने की जो चेष्टाएं हैं वो सब खिलाड़ी जो चेष्टा कराता है वही खिलौने की चेष्टा है ना। आप लोगों ने शतरंज खेली होगी, ना खेला हो तो देखा होगा, है ना? कई चीज होते हैं वहां, सेना होते हैं, हाथी होते हैं, ऊंट होते हैं, घोड़ा भी होता है, राजा भी होता है, वजीर भी होता है, मंत्री, रानी भी होती है, हैं? सब होते हैं। और खेला जाता है, वो राजा अपनी मर्जी से खेलता है कि खिलाड़ी की मर्जी से खेलता है, हैं? वो राजा अपनी मर्जी से खेलता है कि खिलाड़ी की मर्जी से खेलता है? खिलाड़ी जिस खाने में ले जाकर रख दिया वहीं जाकर बैठेगा। हाथी अपने मर्जी से चलता है कि खिलाड़ी चलाता है? शतरंज का खेल तो देखा है ना। ऊंट अपने मर्जी से चलता है कि खिलाड़ी के खिलाने चलाने पर चलता है? राजा अपनी मर्जी से घिर जाता है कि खिलाड़ी घेरने पर घेरता है? मारते हैं वहां, हाथी ने ऊंट को मारेगा, ऊंट हाथी को नहीं मार सकता, उल्टा नहीं होता है। हाथी ऊंट को मारेगा, ऊंट घोड़े को मारेगा, सेनाएं घेरेंगे, शत्रु पक्ष का सेना, मित्र पक्ष का सेना, बंदी बनाएंगे राजा को, घेरेंगे चारों तरफ से,
1: लेव जी
0: खेलो क्या बढ़िया मिलता है, बढ़िया खेल होता है। शंकराचार्य जी क्या सुंदर भाव व्यक्त करते हैं, जैसे शतरंज के खेल में जितने भी खिलाड़ी हैं, नहीं खिलौने हैं, उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती है, वह उनकी जो चेष्टा होती है वो खिलाड़ी के द्वारा फिक्स किया हुआ चेष्टा ही उनकी चेष्टा है। खिलाड़ी ने जो करवाया वही वो करते हैं, खिलाड़ी जो प्रेरणा दे रहा है वही वो प्रेरित होकर वही कर्म करेंगे। यत कर्मा चरितम मया च भवतो प्रीत्यै भवति वतत। हे महाराज हे पशुपते, मैं जो कुछ भी क्रिया करता हूं वो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूं। खिलौना अपनी प्रसन्नता के लिए परिचालित होता है कि खिलाड़ी के प्रसन्नता के लिए? बोलो, खिलाड़ी द्वारा परिचालित खिलौना अपनी प्रसन्नता के लिए परिचालित होता है कि खिलाड़ी के प्रसन्नता के लिए, सुख दुख के लिए परिचालित होता है? हैं? खिलाड़ी के सुख दुख के लिए, हाँ, उसकी क्रिया, खिलौने की क्रिया खिलाड़ी द्वारा परिचालित होने पर उसकी क्रिया खिलाड़ी के सुख दुख का कारण बनेगा, खिलौने की सुख दुख का कारण नहीं बनता। समझ गए कि नहीं, बोलो। चलाते समय में, उस खिलौने को चलाते समय, परिचालन करते समय में खिलाड़ी ने बुद्धि नहीं पहुंचाई, रख खिलौने को, अपने खिलौने को उसने गलत परिचालन की, तो शत्रु पक्ष सामने का खिलाड़ी ने उसको मार देगा, मारेगा कि नहीं, और उसका खिलौना जो है बाहर हो गया, आउट हो गया, चेसिस से आउट हो गया, वो चेसिस से आउट हो गया, उससे शतरंज के उससे में बाहर हो गया वो खिलौना, मैं बाहर हो गया करके खिलौना रोएगा? हैं? कौन रोएगा? मेरा खिलौना बाहर हो गया, ये देखो उसने मेरे खिलौने को बाहर कर दिया करके खिलाड़ी ही दुखी होगा। खिलौने को तो कोई मतलब नहीं, उसको तो यहां रख दो, यहीं पड़ा है, उसने मार दिया तो नीचे रख दिया तो नीचे पड़ा है। समझ गए कि नहीं? दूसरे पक्ष का ने मार दिया, नीचे पड़ा गया, ये मर गया, नीचे रख दिया, नीचे ही पड़ा है, है? उसने अपने पक्ष को बचा लिया तो बच गया, तो ऊपर ही है वो, बच गया, खिलाड़ी खुश होगा, मैं बच गया कहेगा खिलौना, हा क्या कहना, मैं बच गया कहेगा वो खिलौना, उसकी अपनी चेष्टा ही नहीं है, क्योंकि उसकी चेष्टा उसी के सुख दुख के लिए नहीं है। देखो ध्यान देकर सुनो,
2: सत्य कभी असुंदर नहीं हो सकता, सत्य शिव है, अर्थात सत्य वो है जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है, दोनों शर्तें उसके साथ में जुड़ी हुई है। सत्य वो है जो कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है, इसलिए सत्य के साथ जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी, कल्याणकारी हो और सुंदर हो, अच्छा लगे, सुंदर लगे, सत्यता में स्वाभाविकता है, इसलिए सत्य बोलना सहज है, सरल है, कल्याणकारी है, सुंदर है। झूठ बोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, परंतु फिर भी हम, क्योंकि अस्वाभाविक है, शिव सुंदर है, पहला सत्य धर्म है सत्य, तो सत्य तो हमेशा मुख में रहना चाहिए, और सत्य मुख में जो चीज मुंह में होगी वो धीरे धीरे मन में भी उतरेगी, और जो मन में आएगी वो हमेशा बुद्धि में भी आएगी। जिह्वा में आई, मन में उतरी, मन ने बुद्धि के पास दी, इस प्रकार मन बुद्धि वाणी में जो सत्य होगा तो वो निश्चित रूप से हमारे आचरण में भी आ जाएगा, व्यवहार में भी आ जाएगा। नाना पहली शर्त है सत्य, और दूसरा है दया। जीवन में दया तो होनी ही चाहिए, दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं नारा। इसीलिए कहा व्यास जी ने लिखा है अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचनं द्वय, वेद व्यास कहते हैं 18 पुराणों में मैंने जो बात कही है लिखी है वो मैं केवल दो वाक्यों में कह देता हूँ। वो दो वाक्य सिर्फ मेरे ये हैं, अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचनं द्वय परो उपकाराय, पुण्याय पर पापम पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने जैसा कोई पाप नहीं है, परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है। दया करनी चाहिए, दया के साथ जहां तक हो सके हमें दूसरे के लिए परोपकार की भावना, दूसरे का भला करने की भावना हरदम हमारे हृदय में रहनी चाहिए, और जीव मात्र के साथ प्राणी मात्र के साथ हृदय के अंदर एक दया का भाव होना चाहिए। दया ही मनुष्य का धर्म है नारायण। कथा आती है कि ब्रह्मा जी के पास एक बार उपदेश लेने के लिए ये तीनों ही एक साथ पहुंचे, देव मानव और दानव। तीनों जब एक साथ पहुंचे और तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह आप हम सबको उपदेश दीजिए, आप हमको उपदेश दीजिए। द द द तीनों को ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। द द द तीनों को जब एक साथ उपदेश दिया तो ब्रह्मा जी से उपदेश लेकर देवता लोग लौट गए। ब्रह्मा जी ने पूछा तुमको जो उपदेश मिला वो समझ गए? बोले हाँ समझ गए। देवता लोग लौटे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने उन्होंने अपने अनुकूल अर्थ निकाला, अपने अनुकूल अर्थ ये निकाला, द का अर्थ उन्होंने ये निकाला कि ब्रह्मा जी हमें कहते हैं तुम इंद्रियों के ऊपर दमन करो, इंद्रियों पर दमन करो, यही अर्थ हमारे लिए निकाला गया है, हमें इंद्रियों का दमन करना चाहिए। और असुरों से कहा तुमने अर्थ निकाला? और उन्होंने कहा कि हाँ हमने ये दर्द निकाला कि दया करनी चाहिए। उन्होंने ये अर्थ निकाल लिया, और जब मनुष्यों से पूछा कि तुमने क्या अर्थ निकाला, उन्होंने कहा महाराज हमने ये अर्थ निकाला कि हमें दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। ये अर्थ हमारा निकला कि हमने यही अर्थ, इसका अर्थ समझा है कि मनुष्य संग्रही होता है, हमारे अंदर वृत्ति क्या रहती है कि जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, जोड़ लो। ईमानदारी से सोचो कि हम संग्रह में कैसे लगते हैं। जैसे एक चींटी होती ना, चींटी धीरे धीरे बड़ी उसके साथ संग्रह करती है, और उसी तरह से हम सब लोग जोड़ लो इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, इकट्ठा करने। दान का अर्थ है उदार वृत्ति, अपनी वृत्ति को उदार रखना चाहिए, अर्थात जोड़ने की, इकट्ठा करने के लिए। हम बैठ करके कभी विचार करें कि जितना हमारे पास सामान हमने इकट्ठा किया हुआ है, इस सामान में कितना सामान है कि जो हमारे जीवन में उपयोग में आता है रोज, जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, वो सामान कितना हमारे पास है। तो शायद मैं समझती हूँ कि बहुत थोड़ा सामान होगा जो दिन प्रतिदिन आपके जीवन में उपयोग में आ रहा होगा, बाकी ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, रखते रखते आपका घर पूरा भर जाता है। और वो सामान कभी कोई मतलब नहीं, कभी कोई उसको आप व्यवहार में ला रहे हो, काम में ला रहे हो, सो कुछ नहीं है, पर एक व्रति है कि हमें जोड़ना है, इकट्ठा करना है। पर ये जोड़ने के लिए कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ रखी एक बर्तन में, यम के गण आए पकड़ ले गए, रह गई मन की मन में, जोड़ते के जोड़ते रह गए, परंतु ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, काम तो केवल राम का नाम आएगा, भगवान का नाम आएगा। इसलिए नारायण उदार वृत्ति होनी चाहिए, वृत्ति के अंदर उदारता होनी चाहिए। धर्म का दूसरा पाद है दया, अर्थात दया और सोच हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए। बोले सोच माने पवित्रता, जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। बाह्य सूची और अंतर सूची, बाहर से की पवित्रता और भीतर की पवित्रता। जब तक ये पवित्रता हमारे जीवन में नहीं आएगी, पवित्रता आनी चाहिए। बोले पवित्रता, बाहर की पवित्रता तो स्नान से कर लोगे, पर भीतर की पवित्रता किससे होगी? अंतर पवित्र कैसे होगा? जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पंडित लोग आपको सबसे पहले आपको पवित्रता कराते हैं। पवित्रता करने के लिए क्या करते हैं कि आपके हाथ में जल देते हैं, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ये कह हृदकेशाय नमः, ऐसा कहकर भगवान का नाम लेकर आपको कहते हैं आचमन करो, जल पियो। भगवान के नाम से जब आपको जल दिया जाता है और उस जल का आप पान करते हैं तो आपके भीतर पवित्रता आती है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के नाम से पवित्रता है, भगवान का नाम भीतर पवित्र करता है, जल बाहर पवित्र करता है और भगवान का नाम भीतर पवित्र करता है। जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं आएगी तब तक बाहरी पवित्रता से बात नहीं बनेगी। और जब बाहर की पवित्रता तो है, बाहर से हम नहाते तो हैं, बाहर से हम स्वच्छ वस्त्र भी पहनते हैं, परंतु याद रखना ये बाहरी पवित्रता, ये सफाई तो हो सकती है, स्वच्छता तो हो सकती है, पर पवित्रता तो भगवान के नाम से ही आ सकती है। इसलिए सोच है कि हम बाहर से भी पवित्र रहें। हम बाहर से पवित्र कहने का अभिप्राय हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए, हमारा आचार और विचार पवित्र होना चाहिए। आचरण जब तक पवित्र नहीं होगा, आचरण माने चरित्र, चरित्र में पवित्रता अपनी इंद्रियों की पवित्रता, कर्मेंद्रियों की पवित्रता और ज्ञानेंद्रियों की पवित्रता, इन हाथों की पवित्रता, इन पांवों की पवित्रता, कर्मेंद्रियों की पवित्रता और ज्ञानेंद्रियों की पवित्रता। जब तक इंद्रियां सत्कर्म परायण नहीं होंगी तो इंद्रियों में पवित्रता नहीं होगी ना। और उसके साथ साथ अंतः पवित्रता है, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता और हमारे चित्त की पवित्रता, अंतस्करण की पवित्रता, ये अंतः पवित्रता है। अंतस्करण की मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी पवित्रता को ही भीतरी पवित्रता कही गई है। ये पवित्र होते हैं भगवान के स्मरण से, चित्त पवित्र होता है भगवान के चिंतन से, मन पवित्र होता है भगवान की उपासना से, बुद्धि पवित्र होती है सत्संग से, अहंकार पवित्र होता है भगवान की सेवा से। याद रखना, अहंकार की पवित्रता किसमें है? जब सेवा धर्म सेवा आ जाए, क्योंकि अहंकार जब तक सेवा नहीं होती तब तक मिटता नहीं है। इसलिए सेवा करने से हमारा अहम समर्पित होता है, अहंकार मरता है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। सत्संग करने से बुद्धि पवित्र होती है, सत्संग करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का, नाम का बार बार चित्त में चिंतन करना चाहिए, इससे चित्त पवित्र हो

से ये शरीर छोड़ना न पड़े। विश्वामित्र तपस्या करके वापस लौट रहे। उन्होंने पूछा अपनी पत्नी और पुत्र से, जब मैं तप करने गया था तब तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होता था? उन्होंने कहा कि पतिदेव, जब आप तप करने के लिए गए हुए थे तब हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए सत्यव्रत हमारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते थे। तो राजा से पूछा कि राजन, तुमने मेरी पति पत्नी पुत्र आदि की सेवा की, रक्षा किया, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कर करूं? मुनिवर, यदि आप प्रसन्न होकर मेरा कुछ हित करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मरने से बड़ा डर लगता है, मुझे सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अपने तपोबल के प्रभाव से, तप के बल के प्रभाव से तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजेंगे। स्वर्ग की ओर भेज दिया, ऊपर जा रहे सत्यव्रत स्वर्ग की ओर। स्वर्गादि में ब्रह्मादि देवताओं ने देखा कि ये शरीर स्वर्ग आ रहे हैं। ब्रह्मा ने सोचा कि मेरी व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाएगी। ब्रह्मादि देवताओं ने स्वर्ग से सत्यव्रत को नीचे की ओर धकेला और नीचे से विश्वामित्र ने अपने तप से ऊपर की ओर धकेला तो अधर में जाकर लटक गए, तो इसलिए उनका नाम त्रिशंकु भी हो गया। जब अधर में जाकर लड़े, कहा, गुरुदेव मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल रहा है, तो कहा, चिंता मत करो। विधि को ललकार देते हुए विश्वामित्र ने कहा, यदि आप अपने स्वर्ग में इन्हें स्थान नहीं देंगे तो मैं नए स्वर्ग की रचना करूंगा। और नए स्वर्ग की रचना करने का संकल्प लेकर विश्वामित्र ने नए स्वर्ग की सृष्टि आरंभ कर दी, जिसमें उन्होंने सुंदर सुंदर से वन आरंभ कर दिए और जिनमें सुंदर से फलादि उत्पन्न कर दिए, नारियल फल, ये जो सब अन्नादि तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में है, फलादि ये आदि जो है, फल नारियल ये आदि आदि जो सृष्टि है, ये सब विश्वामित्र की अपनी सृष्टि है। विश्वामित्र की सृष्टि में ये नाना प्रकार के रसाल फूल फल आदि विश्वामित्र जी ने अपनी सृष्टि में आरंभ कर दिया। लगा ब्रह्मा जी को कि सचमुच विश्वामित्र नई सृष्टि को रच डालेंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें सत्य व्रत को आगे स्वर्ग में स्थान देना पड़ा नारा। तो कहने का अभिप्राय था कि तप का बल इतना था विश्वामित्र के पास। वो विश्वामित्र चाहते हैं कि मैं ब्रह्म ऋषि बनूं। जब ब्रह्म ऋषि कब होंगे? वो जब स्वयं वशिष्ठ अपने मुंह से एक बार संबोधित कर दें, ब्रह्म ऋषि कह दें, तो वो ब्रह्म ऋषि माने जाएंगे। परिणाम ये हुआ कि वशिष्ठ ने अपने मुंह से कभी विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। विश्वामित्र चाहते हैं कि ये बोले, और विश्वामित्र वशिष्ठ से ब्रह्म ऋषि बुलवाने के लिए उनके बहुत बहुत सारे शिष्यों के साथ उन्होंने युद्ध किया, उन्हें समाप्त कर दिया। ज्यादा से ज्यादा जितनी हानि होती थी वो हानि सारी पहुंचाई गई वशिष्ठ को, परंतु वशिष्ठ ऋषि किसी भी दुख से, किसी भी हानि से व्यथित होकर के उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि शब्द से संबोधित नहीं किया। एक दिन की घटना थी। विश्वामित्र ने सोचा कि आज मैं वशिष्ठ को ही समाप्त कर डालूंगा, जब वशिष्ठ ही नहीं रहेंगे तो मैं अपने आप ब्रह्म ऋषि कहलाऊंगा। इस प्रकार रात्रि के समय में एक तलवार हाथ में लेकर, चांदनी रात थी, आकाश में पूर्ण चंद्र उदित था, और एक वृक्ष में जाकर छुप गए। उन्हीं की कुटिया के आंगन में लगा हुआ एक वृक्ष जिसमें जाकर विश्वामित्र छुप कर बैठे हुए हैं, अवसर पाकर अपने शस्त्र से आघात करके वशिष्ठ जी को समाप्त कर देंगे।

और इधर वशिष्ठ माता अरुंधति को साथ में लिए हुए और अपने शिष्यों के मंडल में बैठे हुए थे, शिष्य मंडली में बैठे हुए थे। चंद्रमा की ओर देखते हुए माता अरुंधति कहने लगी, भगवान आज तो पूर्ण चंद्र आकाश में उदित ऐसे हैं, इतने सुंदर शोभा पा रहे हैं, ये चांद धवल चांदनी का प्रकाश इस पृथ्वी पर ऐसा फैला हुआ है जैसे मानो संसार में विश्वामित्र के तप का प्रभाव फैला हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ अरुंधति, ये आज का चंद्रमा तो बहुत सुंदर है, कितने उज्जवल धवल अपनी शीत ज्योतिषना से सारी सृष्टि को आनंद दे रहा है, जैसा संसार में विश्वामित्र का तप सबको आनंदित दे रहा है। विश्वामित्र जी सोचने लगे, जिस व्यक्ति को मैं हमेशा अपना शत्रु ठहराता रहा, जिसे मैं अपना शत्रु समझ रहा था, वो मेरा इतना बड़ा प्रशंसक है। जिस व्यक्ति के मैंने 100 पुत्र मार दिए, उसके मन में रंच मात्र भी मेरे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। बस विश्वामित्र पेड़ से उतरे और आकर मुनिवर के चरणों में, वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करने लगे। जैसे विश्वामित्र के चरणों, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, तो वशिष्ठ जी ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, विश्वामित्र को अपने अंक में भरा और कहा, आओ ब्रह्मर्षि। अब तो और असमंजस में थे, ये शब्द सुनने के लिए मैंने आपका कितना अपकार किया, परंतु आपके मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकला, पर आज आपके मुंह से ये शब्द निकल रहा है, ब्रह्मर्षि। ये शब्द यदि आप पहले बोल दिए होते, ये संबोधन पहले दे दिए होते, तो मैं आपका इतना अपकार नहीं करता, इतनी आपको हानि नहीं पहुंचाता। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, मुनिवर आज तक आपकी बुद्धि में शस्त्र बल को महत्व था, आप हमेशा शस्त्र को ही बल समझकर चलते थे, शस्त्र बल को ही महान मानते थे। जब तक आपकी बुद्धि में शस्त्र के बल की महानता थी, तब तक आप राजर्षि कहलाने के योग्य थे। आज आपने उस शस्त्र बल की महानता को छोड़ करके ब्रह्म बल को महान माना है, तो इसलिए ब्रह्म बल को महान मानने के कारण आज आप ब्रह्म ऋषि कहलाने के योग्य है। अर्थात ब्रह्म ऋषि कौन, अर्थात ब्रह्म को महान मानने वाला कौन, बोले ब्रह्म बल क्या है, अर्थात विशुद्ध ज्ञान का बल है, ज्ञान के बल को ही वास्तव में बल समझा है, तो इसलिए आप ब्रह्म ऋषि कहलाने के योग्य हो गए हैं। तो ये ब्रह्म बल की महानता कैसे समझ में, वशिष्ठ जी को ये ब्रह्म बल कैसे समझ में आया, जो विश्वामित्र को तप से समझ में नहीं आया, ये बल समझा उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, वो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी के अंदर इतना अपकार करने वाले विश्वामित्र के मन के प्रति कोई मन में द्वेष भाव नहीं है, उनका हृदय द्वेष से रहित है, उज्जवल है। बोले क्यों, क्योंकि ये शिव के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ही जप का प्रभाव तो है, जप के प्रभाव से आपके हृदय का द्वेष समाप्त होगा, माने अज्ञान समाप्त होगा, ज्ञान का सूर्य उदय होगा, प्रकाश की प्राप्ति होगी, अर्थात स्वस्वरूप आत्म ज्योति की प्राप्ति होगी, ऐसा दिव्य नाम ये शिव नाम है, इसलिए निरंतर कहें।

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பகவான் பாஷ்யகார சங்கராச்சாரியஜி கேட்டு கேயம் கீதா நாம சஹஸ்ரம் தேயம் ஸ்ரீபதி ரூபம ஜஸ்ரம் நேயம் சஜ்ஜன சங்கே சித்தம் தேயம் தீன ஜனாய சவித்தம். சபசே பலே பத்தாயா யதி கேயம் யனி கானே கி இச்சா ஹோ யதி தோ கேதே இது கேய ஹே கே கேதே ஹே கானே யோக்ய உஸ்கோ கேதே ஹே கேய கேயம் ஜ்ய நீ க ககார் கேயம் தோ கேதே ஹே கீதா ஔர் நாம சஹஸ்ரம் गीता का पाठ सहस्र नाम का पाठ महिमन का पाठ जो भी हम जिस देवता के प्रति हमारी श्रद्धा है उस देवता का स्तोत्र का पाठ करना. भगवान भाष्यकार ने सभी देवताओं की स्तुति की है और उसका अभिप्राय यह था कि जो व्यक्ति जिस देवता में श्रद्धा रखता है वो उस देवता को प्रसन्न करे और उससे आगे बढ़े. इसलिए तद अनुकूल सभी देवताओं के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने स्तोत्र की रचना की है, इसलिए उसका पाठ करते रहना चाहिए. और पाठ का क्या फल है देखो वो भी बताया. भगवद गीता किंचद धीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि ये न मुरारे समर्चा तस्य यम किम कुरुते चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. देखे भगवान भाष्यकार यहां प्रतिभू है. प्रतिभू समझ में है? प्रतिभू कहते जिम्मेदार. देखिए आपके पास जो 100-500 की जो नोट है कि नहीं, उसके अंदर वो एक प्रॉमिस किया जाता है गवर्नर की ओर से और उसमें गवर्नर की साइन रहती है. अब वो 100-500 जो भी नोट है वो आप चाहे कहीं भी लेकर के चले जाए तो उसका जो मूल्य उससे जो जितने मूल्य वो है उनकी जो वस्तु प्राप्त होती है वो कहीं से भी आपको मिल जाएगी क्योंकि गवर्नर ने आपको प्रॉमिस किया. भगवान भाष्यकार का यह प्रॉमिस है कि भगवद गीता यदि भगवद गीता का थोड़ा भी यदि अध्ययन करता है गंगा जल का यदि वो पान करता है भगवान का एक बार नाम लेता है तो कहा कि यमराज उनकी चर्चा तक नहीं कर सकते. तस्य यम किम कुरते चर्चा. अब यमराज यानी मृत्यु क्यों चर्चा करेंगे? उनको यमलोक में ले जाने के लिए ने यमलोक का भागीदार कौन होगा? जो पापी व्यक्ति होगा तो यमराजा है उन्हीं का ही स्मरण करेंगे, जो पापी होगा उनका ही स्मरण करेंगे. अब जिन्होंने गीता का अध्ययन किया ज्ञान रूपी गंगा जल का पान किया भगवान का एक बार नाम लिया तो उनके तो सारे पाप समाप्त हो गए. अब पाप समाप्त हो गए तो वो निष्पाप हो गया और निष्पापी व्यक्ति का स्मरण कौन करेंगे? भगवान करेंगे. भगवान कहेंगे अपने देवदूतों को कहेंगे कि जाओ उनको तुम मेरे पास ले आओ. अजामिल की कथा प्रसिद्ध है भागवत में. दुराचारी पापी व्यभिचारी होते हुए भी उन्होंने अपने पुत्र की व्याज से भगवान का नाम लिया तो भगवान ने कहा कि अपने देवदूतों को कहा कि जाओ तुमको तुम उनको छुड़ाओ, देव यमदूतों से छुड़ाओ, यहीं ले आओ मेरे पास। और भगवान के दूत वहां गए और यम के दूत पहले से वहां आ रखे थे। यमदूतों ने देवदूतों को देखा, कह रहे तुम यहां कैसे आ गए? तो देवदूत कहने लगे, कह रहे तुम यहां कैसे आ गए? कह रहे वो तो हमारा अधिकार है इनको ले जाने का। यमदूत कहने लगे कि नहीं, ये अन्यायी, ये तो बड़ा दुराचारी है, पापी है, व्यभिचारी है, उनका तो यमलोक में स्थान होना चाहिए, ये तो बड़ा अन्यायी है, आप उनको वैकुंठ में ले जाने के लिए आए हैं, बड़ा दिव्य संवाद है, पढ़ना चाहिए। देवदूत कहने लगे कि तुम लोगों को पता नहीं है, जो भगवान का नाम लेता है, एक बार नाम लेता है, उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, वो यमलोक यम सदन का अधिकारी वो नहीं रहता है, वो नरक का भागी नहीं होता। कहते बड़ा दिव्य और लंबा संवाद है। देवदूत ने यमदूतों को भगा दिया और यमदूत जो है गए अपने मुखिया के पास, राजा के पास, कहने लगे कि अरे ये तो बड़ा अन्याय हो गया, कहले हम गए उनको लेने के लिए, वहां देवदूत आ गए और हमको मार करके भगा दिया। अब आज तक तो हम यही सोचते थे कि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तब वो लोग कौन थे जिन्होंने हमको भगा दिया? क्या वो आपसे भी बड़े है क्या? तो धर्मराज कहने लगे कि वो मेरे से भी बड़े हैं। तुम लोग गलत जगह पहुंच गए, तुमको वहीं जाना है। कहा? तो कहा जिह्वाम्न भक्ति भगवन गुण नाम धेयम, को वहीं जाना है जो अपनी वाणी के द्वारा भगवान का कभी नाम नहीं लेता है, कभी नाम नहीं लिया है, उनके वहां आपको जाना है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वाणी से उच्चारण करने मात्र से अर्थ न भी समझ में आए किंतु नामोच्चारण मात्र करेंगे तो भगवान ये मान लेते कि ये मेरे को ही बुला रहे। अब अजामिल ने भगवान को थोड़ा ना पुकारा था, किसको पुकारा था बताइए? अपने पुत्र को, और पुत्र का नाम नारायण रखा था। अब नारायण शब्द का अर्थ किस में घटेगा बताइए? पुत्र में घटेगा कि परमात्मा में घटेगा? तो जो नाम के अंदर ये शक्ति होती है कि वो अर्थ को उपस्थित कर देती है, वाणी के अंदर बड़ी बड़ी विलक्षण शक्ति है। शब्द शक्ति रचिंत्यत्वाद शब्दादेव अपरोक्षति, भगवान भाष्यकार सदाचार स्तोत्र में कहते हैं शब्द के अंदर अचिंत्य शक्ति रहती है, शब्द का उच्चारण करते ही उनका अर्थ अवश्य उपस्थित हो ही जाता है। इसलिए नारायण शब्द का अर्थ है वो भगवान विष्णु। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर सुनवः अयनम तस्य ताम पूर्व तेन नारायण स्मृतः, ऐसा नारायण शब्द का अर्थ किया गया। वो तो भगवान में ही घटेगा, पुत्र में तो घटेगा ही नहीं। इसलिए हम वाणी से उच्चारण, यदि गीता वाक्य का उच्चारण करेंगे तो गीता किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है कि नहीं बताइए? भगवान ने जो वाणी बोली है वो वाणी यदि हम बोलेंगे तो उनका लाभ जो है अवश्य, चाहे समझे या न समझे, मिलेगा ही। जैसे समझ लो लोगों में अनुकरण नहीं होता। अब ठीक है किसका अनुकरण करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस बात को नहीं जानते, लेकिन लोग का एक स्वभाव होता है कि किसी का अनुकरण करे। इसलिए जो नाचने गाने वाले लोग हैं वो जैसे कपड़े पहनते हैं, वो जैसे खाते हैं, वो जैसे पीते हैं, जैसे वो चलते हैं, वो जहां जाते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि उनका अनुकरण करते हैं, वो जैसे खाते पीते जो जो एक्शन करते हैं तो लोग भी उनका अनुकरण करते हैं। लोग का स्वभाव है अनुकरण करे, तो फिर हम ये अनुकरण क्यों न करें? भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो गाया है, उनको हम प्रतिबद्ध गाए तो वो भी अनुकरण है, उतने मात्रा से हमको लाभ मिलेगा। गीता पाठ उपनिषद पाठ करना ही वाणी का तप है। यदि वो वाणी से इस प्रकार का तप होगा तो वो हमारी जो वाणी है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाती है। यही प्रार्थना का अभिप्राय है कि हमारी वाग इंद्रिया ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। हम यहां वाणी प्रधान है, वाणी को उपलक्षण मान करके हाथ पैर वगैरह से भी यही मानना है। जैसे आपको कल बताया था, हाथ से हम सेवा करें, यदि हाथ से हम सेवा करेंगे निष्काम भाव से, तो फिर वो जो है हाथ ब्रह्म ध्यान के अनुकूल बन जाएगा। पैर से हम चले स्वाध्याय करने के लिए, सत्संग करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो वो जो पैर का गमन है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल है। इस तरह से जैसे कल अन्य कर्मेंद्रियों का भी बताया था ना, कि पुत्रोत्पत्ति वगैरह जो भी कर्म इंद्रियों के द्वारा करते हैं वो भी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल करना। अब वाणी से तो विवाद हो गई, वाक प्राण चक्षु, प्राण भी हमारे ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो, तो प्राण ब्रह्म ध्यान के अनुकूल कैसे हो सकता है? देखिए, देखो हमारा शरीर किससे धारण किया हुआ? प्राण ने धारण किया है। तो हमारा प्राण ब्रह्म ध्यान के अनुकूल कैसे होगा? तो जैसे गीता में भगवान ने कहा, प्राणापानव समव कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणव, नासिका के अंदर जो चरण करने वाला प्राण है वो प्राण यदि सम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल। प्राण और अपान को क्या कर देना? सम कर देना है, यानी कुंभक कर देना है। यदि वो साम्यावस्था को प्राप्त हो जाए तो वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल है वो। और प्राण है वो हमारे शरीर के अंदर शक्ति है। देखिए, प्राण यदि नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। प्राण के अंदर क्रिया शक्ति है, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो भी क्रिया करते हैं उस कर्मेंद्रियों में शक्ति किसकी है? प्राण की है। समझ लो कि हम लोग बोलते हैं, जो सिंगर है उनको इस बात का निश्चित पता रहता है। वो सिंगर जो गाते हैं तो वो एक साथ में इतना ही गा सकते हैं जितना श्वास है। श्वास खत्म हो गया तो वो पंक्ति वहीं के वहीं अधूरी रह जाती है। जो गाते हैं उसको इस बात का पता, गाने के लिए क्या चाहिए? प्राण चाहिए। इसलिए पहले प्राण को पूरक करना पड़ता है। आप पूरक किए हुए प्राण, पूरक करने के बाद आप गाना शुरू करेंगे, जैसे आप गाते चले जाएंगे वो पूरक प्राण है वो रेचक होता चला जाता है। और एक समय आ जाता है कि जो है प्राण है वो बिल्कुल रेचक हो जाता है, फिर तुरंत उसको खींचना पड़ता है। प्राण बिल्कुल रेचक करके बोलिए, कौन बोल सकेगा? बिल्कुल प्राण को रेचक कर दीजिए फिर बोलिए, नहीं हो सकेगा। तब पता चलेगा कि हमारे शरीर की स्थिति में प्राण की कितनी आवश्यकता है। यदि ये प्राण अपने स्वरूप में नहीं है तो वो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाएगा, और तो फिर ब्रह्म ध्यान के अनुकूल वो नहीं होगा। इसलिए बोलने के लिए, अच्छा कोई चीज उठानी है, आपको कहे कि चलो इस ये चीज को उठा करके यहां से वहां रख लो, तो देखिए वो जो कार्य है वो भी प्राण के द्वारा ही होगा। उस समय भी प्राण को रोक लेना पड़ता है। यदि उस समय भी आप प्राण को बिल्कुल रेचक कर दीजिए उसके बाद काम नहीं होगा। इसलिए सामान्य भाषा में नहीं कहते इसके अंदर कोई दम नहीं है। दम नहीं है यानी प्राण शक्ति नहीं है। इसलिए प्राण की बड़ी आवश्यकता है। ये शरीर की स्थिति में प्राण ही कारण है। देखो बोलने के लिए भी प्राण कारण है, ये हाथ से कोई चीज उठाने के लिए, सेवा करने के लिए भी, चलने के लिए भी, और जो गुप्त इंद्रियों के जो दो कार्य है उसमें भी प्राण की आवश्यकता पड़ती है। देखिए सोच क्रिया तभी होगी जब प्राण सानुकूल हो। अपान वायु सानुकूल नहीं है तो पेट साफ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं ना पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस हो रहा है। गैस क्या, वो अपान वायु है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है, उसका जैसा जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जगह करता है, कहीं ना कहीं जगह करता है, तो वो जो है शरीर के लिए वो अस्वस्थता का कारण बन जाता है, और अस्वस्थ शरीर के द्वारा जो है कुछ काम नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें भी और पुत्रोत्पत्ति के लिए भी वो प्राण ही कारण है। पुत्रोत्पत्ति के लिए जो गर्भाधान किया जाता है और उसके बाद जो मैथुन क्रिया, उसमें भी प्राण की आवश्यकता है, नहीं तो वीर्य सिंचन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें भी क्या चाहिए बताइए, प्राण चाहिए, और वो अनुकूल चाहिए। इसलिए पांचों प्राण है जो हमारी प्राण वृत्ति है शरीर में, वो पांचों प्राण वृत्ति है वो शरीर की स्थिति में कारण है। यदि वो सुचारू रूप से नहीं होंगे तो हमारा ये जो शरीर ब्रह्म ध्यान के लिए अनुकूल नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा प्राण आप्यायन्तु, फिर कहा चक्षु, चक्षु से अभिप्राय है ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया भी वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जैसे जो दर्शन स्पर्शन है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। तो ये पहला वाक्य हो गया ममांगानी वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम सर्वाणी इंद्रियाणी आप्यायन्तु, मेरे जो भी अंग है, एक वाक्य बन गया। अंग फिर गिना भी दिए गए, वाक प्राण चक्षु श्रोत्र और सर्वाणी इंद्रियाणी, जो जिसका नाम नहीं लिया गया वो सब ले लीजिए। सर्वाणी इंद्रियाणी आप्यायन्तु, मेरी सभी इंद्रियों के द्वारा मैं ब्रह्म का ध्यान करूं, ब्रह्म चिंतन करूं, ब्रह्म के लिए गमन करूं, ब्रह्म के लिए ग्रहण करूं, ब्रह्म के लिए ही बोलूं, ये अभिप्राय है। फिर दूसरा वाक्य हो गया अथ बलम, देखिए उसमें है अथ बलम, मैं अथो है ना, अथो अथो बलम, वो ओकार का जो है जब संधि विग्रह होगा तो विसर्ग हो जाएगा, अथ बलम अथो बलम, यानी अथ का अर्थ है और। केवल ये जो हमारी इंद्रिया है वो बलम, इंद्रियों का जो बल है वो भी आप्यायन्तु, तो बल शक्ति का आधान हो, और वो बल है, वो बल से हम ब्रह्म का ध्यान करें, वो ब्रह्म है बल, वो भी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। हम ये नहीं कि हमारे पास जो इंद्रियों का बल है वो कहीं किसी को सताने के लिए यूज न करें, वो बल भी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो। देखिए होता ऐसा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशाम परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का बल हुआ करता है, एक धन का बल होता है, और एक शक्ति खुद, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीड़नाय, तो तीन हुए कि नहीं, एक धन, विद्या, धन और शक्ति, विद्या बुद्धि शक्ति, और धन है वो धन, धन से जो शक्ति, धन बल और शक्ति यानी कि बाहुबल, ये कहते हैं ना ये बड़ा बाहुबली है या धन बली है। लोक में जन बल, धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, ये सब बल नहीं कहते। और जब ये बल व्यक्ति के अंदर आ जाए तो बड़ा वो प्राउड हो जाता है, वो अपने को ये सोचने लगता है कि मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं। विवेक के अभाव में वो बल का जो है वो दुरुपयोग करता है। खल और साधु में ये भेद है, यदि साधु के पास विद्या है तो वो दूसरे को वो बांटेगा, वो ज्ञानाय दूसरे को ज्ञान देगा, वो हर हमेशा ही सोचता रहेगा कि ये इनका लाभ दूसरे को भी मिले। यदि खल के पास यदि विद्या आ जाती है तो वो विवाद करेगा, विवाद आय उसका उपयोग, विवाद करेगा और सोचेगा कि ये तो है मेरे से नीचा है, मैं उसको हरा सकता हूं, विवाद में उसको परास्त कर सकता हूं, वो विवाद करेगा उससे। साधु के पास यदि धन आता है तो वो दानाय वो परोपकार करेगा, वो उनके लिए, वो दूसरे के लिए उनका उपयोग करेगा, परोपकार करेगा। साधु को हम लोग धन इसलिए ही तो देते कि ठीक है हम लोग अभी कमाने में व्यस्त है, हम कमा रहे दान करने का या सदुपयोग करने का, खुद यदि उनका उपयोग करने का यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम साधु लोगों को दे देते हैं कि साधु लोग जो है बड़े परोपकार के काम करते तो उसको दो तो हमारे धन का सदुपयोग हो जाए। तो धन साधु के पास यदि धन आता है तो वो दाना या वो दूसरे के लिए उसका उपयोग करते हैं, यदि खल के पास आता है तो वो मदाय उनके लिए वो मद का कारण बन जाता है और मद के अहंकार के अंदर वो दूसरे को वो दुख देता है। और साधु के पास यदि शक्ति है तो वो उससे दूसरे का रक्षण करेगा, और खल के पास यदि शक्ति है तो वो पर पीड़नाय वो दूसरे को क्या करेगा, पीड़ित करेगा। इसलिए ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं ना उससे लोग दूर रहते हैं, कहते हैं उससे दूर रहना ठीक है, क्यों, तो कि उसके हाथ बड़े लंबे हैं, कहते हैं बोलते हैं ना हाथ लंबे का अर्थ है वो उससे जो है पंगा नहीं लेना चाहिए, वो किसी का भला नहीं करेगा, वो नुकसान ही करेगा। यदि ज्यादा वो दुष्ट होगा तो डायरेक्ट करेगा और नहीं तो इनडायरेक्ट करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो पीछे पीछे क्या कर रहा है वो। इसलिए जो है शक्ति बल, बल जो है ब्रह्म ध्यान के अनुकूल होना चाहिए, अथ बलम, ये हो गया। अब देखिए जब हमारी ये सारी इंद्रियां जब ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए और अनुकूल होने का लाभ क्या होगा, देखो तो कहा सर्वम उपनिषदम ब्रह्म, ये अनुभव होगा, ये निश्चय हो जाएगा कि सर्वम उपनिषदम ब्रह्म, सर्वम से अभिप्राय है जो इदं कारास्वद, संपूर्ण जो संसार है वो क्या है, वो संसार नाम रूपात्मक संसार संसार है या क्या है, तो कहते हैं वो ब्रह्म एव। और कैसा ब्रह्म है तो कहा उपनिषदम ब्रह्म, मनुष्य बुद्धि परिकल्पित नहीं किंतु उपनिषदम ब्रह्म, उपनिषद माने औपनिषदम, उपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है। तो ये इदम खलु जो ब्रह्म, ये जो कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो श्रुति में कहा कि सारा संसार वो ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, वो ज्ञान उपनिषद से होगा मनुष्य बुद्धि से नहीं होगा। इसलिए जो ब्रह्म है वो उपनिषद प्रतिपाद्य है, ब्रह्म संसार के अंदर सर्वत्र ब्रह्म है, उसको जानने के लिए केवल उपनिषद ही एकमात्र माध्यम है। उपनिषद के ज्ञान से ही होगा। इसलिए उपनिषद का ज्ञान लेने के लिए हमारी सारी इंद्रिय अनुकूल नहीं होगी तो उपनिषद का ज्ञान ही नहीं होगा। उपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान नहीं होगा, अर्थ नहीं समझे में आएगा तो उपनिषद का अर्थ ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा सर्वम उपनिषदम ब्रह्म। सर्वम का अर्थ है निखिलम, जो पंचभूतात्मक जो वो संसार है, स्थावर और जंगम, व्याकृत और अव्याकृत, ये संपूर्ण संसार कैसा है? ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य है, उनकी जो सत्ता है वो ब्रह्म की सत्ता से भिन्न सत्ता नहीं है, यही ब्रह्म दर्शन है। कि जो संसार के पदार्थों की जो सत्ता है वो जिस सत्ता वाले है वो उनकी सत्ता ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, ब्रह्म की सत्ता से वो सब सत्तान्वित है। यदि ब्रह्म अंदर से निकल जाए, यदि हार वेट मिट्टी में से सोना निकाल लिया जाए तो हार वेट मिट्टी की कोई सत्ता नहीं रहेगी, घट वगैरह में से मिट्टी को निकाल लिया जाए तो उसकी कोई सत्ता नहीं रहेगी। घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से है, मिट्टी की सत्ता नहीं होगी तो घट की सत्ता नहीं रहेगी। घट के अंदर जो आप पानी वगैरह भर सकते हैं वो मिट्टी के कारण, अंदर से मिट्टी निकाल लो नहीं रहेगा, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। इस तरह ये सारे संसार के पदार्थ है, उस पदार्थ की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, यही समझना, यही ब्रह्म ज्ञान है। उसके लिए हमारी इंद्रिया पूरा कार्यकरण संगात तैयार हो, इसलिए यहां प्रार्थना की जा रही है और प्रार्थना के फलस्वरूप इस प्रकार का जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ओम
1: ओम नमः शिवाय। डियर यूजर्स ऑफ shaivam.org, वी आर वेरी मच डिलाइटेड टू लेट यू ऑल नो दैट due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhanda Nandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Tat Sat. Tau Tattvam Na Janami किंचु शोषि महेश्वर यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। यो वसौ सोऽहं यजामि। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। जाग्रतादि त्रयोन्मुक्तं जाग्रतादिमयं तथा अंकारे सुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति का वर्णन करने के पश्चात तुरीय तत्व का वर्णन किया। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान धनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। अग्रिष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशयम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। इन सभी श्रुतियों का अभिप्राय केवल इतना ही है कि इस बात पर थोड़ा विचार करो कि क्या सोना, जागना, स्वप्न देखना, इनमें से कोई भी ऐसी स्थिति है जो हमारे अपने हाथ में है? सोए हुए हम जाग जाते हैं, क्या ये हमारे हाथ में है कि हम जाग जाते हैं? अगर हमारे हाथ में हो तो फिर वो चिर निद्रा में कोई भी न सोए। सब जो कुछ है ये किसके हाथ में? ये सचमुच में किसी के हाथ में है या लीला मात्र है, विवर्त मात्र है, स्वभाव है उस प्रिय तत्व का कि उस पर ये सब खेल हो रहा? लहरों का उठना ना उठना क्या समुद्र के अपने हाथ में है कि जब वो चाहे तो लहरें चलें और जब वो चाहे ना चलें? समुद्र बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लहर बहुत छोटी सी है, लेकिन क्या समुद्र लहर को रोक सकता है? तो जितना जितना आप इस पर विचार करोगे, देखो वेदांत कहने की बात होती है कि इसका संबंध तर्क से है, बुद्धि से है, तार्किक निष्पत्तियों से है, लॉजिकल कंक्लूजन्स। वस्तुतः जितनी भी बुद्धि की लॉजिक है, जितने भी तर्क हैं, वो तर्कों की अंतम परिणति भाव का जागृत हो जाना। जब ये तर्कों के माध्यम से जो कुछ आप जानते हो अगर वो जीवन में ढल गया तो फिर भाव में बह गया, फिर बुद्धि उसमें, क्योंकि फिर बुद्धि की जरूरत नहीं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आपसे बुरा हो ही नहीं सकेगा, चाहने पर भी नहीं हो सकेगा। जैसे गोपियां, या गोपियां चलो पौराणिक कथाएं हैं, आप अपने इन भक्तों की बातों को लो। इन दिनों में मीरा पर चर्चा करते रहे, उनकी बात ही लो। उनके बस में ही नहीं है कि कुछ बुरा हो, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो शक्ति उनकी क्रियाओं का संचालन कर रही है वो परम सत्य ही है। ये वही बात है जो कल शाम कर रहे थे कि कैसे प्राण पिया बिन राखो जीवन भूल जाए। क्रियाएं ही उसके हाथ में है तो फिर आपसे गलत होगा ही क्या? गलत देखोगे ही कैसे? क्या ठीक है क्या गलत है यहां तक बुद्धि का काम, लेकिन जब जो समझ आ गया कि ये ठीक है और वो जीवन में ढाल लिया, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वहां तक हम पहुंच गए, बस फिर वहां पर किनारे से आगे जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि संसार के आकर्षण को छोड़ पाना वस्तुतः छोड़ना कुछ नहीं है। हमारी बुद्धि में पढ़ाते हुए सिखाते हुए समझाया गया है कि संसार को छोड़ना। अगर प्रारंभ से ही शिक्षा ये हो कि ये बहुत अच्छा है, जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हो, जो भी भोग भोग रहे हो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इनसे भी 100 गुना अधिक और भोग है, और उन भोगों का निरूपण करें, उनका लालच दें, ये स्वयं छूटते जाते हैं। ये जो एक नकारात्मक वृत्ति के पहले से इसका निषेध, बहुत गहरे में जब कभी भी आप वेदांत का सोचोगे, चिंतन करोगे, जब तक तो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो निषेध किसका करोगे? अगर 2 तत्व हों तो निषेध करें। एक ही तत्व के विवर्त का क्या निषेध? रस्सी के सांप को मारने का क्या प्रयोजन कि हम उम्र भर इसी में व्यतीत कर दें कि ये सांप है, इसको मारने की तरकीबें सोचते रहें, लाठियां मंगवाते रहें, लोगों को बुलाते रहें, बैंड बाजे वाले, बीन बजाने वाले, स्पेरों को बुलाते रहें। जब पता ही है कि ये रस्सी का सांप है तो उसके लिए प्रयत्न काहे का? प्रयत्न केवल इतना ही है कि निर्भयता जीवन में आ जाए। हमें ये जानने के बाद भी कि ये रस्सी है, सांप नहीं, फिर भी हम डरते हैं कि नहीं, हो सकता रस्सी ना सांप ही हो, इसलिए उस रास्ते पे जाते। तो ये अपने मन की कमजोरी, अपनी दुर्बलता, रस्सी में सांप की बात नहीं है, और मन की कमजोरी या दुर्बलता स्वयं प्रार्थना के कोई इसका तरीका नहीं कि दूर हो। इसके लिए प्रार्थना ही सर्वोत्तम मार्ग है, और प्रार्थना से ही उपलब्धि हुई। सभी साधनाएं अंत में जाकर प्रार्थना में शांत हो जाती। ये सब जब आप बहुत गहरे में सोचेंगे, तो जिनको हम शांति पाठ कहते हैं, जिनको हम ध्यान के मंत्र कहते हैं, जिनको हम आरती कहते हैं, जिसे हम स्तुति कहते हैं, जिसे हम कवच बोलते हैं, ये सब प्रार्थना के ही विभिन्न रूप। देखो, एक बात ये भी ध्यान में रख लेना, वेदांत स्वार्थ पर टिका हुआ है, क्योंकि यहां तो शब्द है और शब्दों के अर्थ है, तो स्वार्थ का मतलब होता है कि स्व का क्या अर्थ है। स्वार्थ, स्व शब्द है एक, उसका अर्थ क्या है, उसी को जानने में लगे रहना, दूसरे की चिंता ना कर। लेकिन लोगों ने, क्योंकि चिंतन था नहीं या है नहीं या अपने आप को भी सोचा नहीं, जो किसी ने सिखा दिया बोलते। जब आप अपना ही अर्थ ढूंढने में लगे रहोगे तो कहां फुर्सत मिलेगी बाहर मुखी होने की, इधर उधर की बातों। परार्थ, दूसरे का सुख, दूसरे को जानना। स्वार्थ में जब आपको स्व का पता लग जाए तो समझ आ जाएगी पर नाम की कोई चीज है नहीं, ये स्व ही पर के रूप में भासित हो रहा है, प्रतिफलित हो रहा है, जैसे रस्सी में सांप। क्योंकि रस्सी एक ही है, उसमें सांप भी दिखाई दिया, किसी को उसमें डंडा दिखाई दिया, किसी को उसमें भूछिद्र दिखाई दिया, किसी ने उसको पानी की लकीर समझा, रस्सी वही है। तो स्व वही है, उसमें पार ये वो तुम ये सब उसी पे, उसी के विवर्त। वो स्व जिस पे टिका हुआ है उसी पे सब कुछ टिका हुआ है। जब आप उस निष्कर्ष पर पहुंचोगे तो कोई कुछ बाकी रह ही नहीं जाता बेटा, और तब जीवन भाव में ढल जाता। बुद्धि का काम इतना ही है कि आपको खींच तान कर भाव तक ले जाए, और जो ही भाव जागृत हुआ, बुद्धि भाव में परिणित हो जाती है या तिरोहित हो जाती है। आम बोलचाल की भाषा में कह लो कि वो छोड़कर चली गई, एक आपको दरवाजा पंचा के अंदर वो चली गई। चली नहीं गई, वस्तुतः उसी ने ही एक इतना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया है कि अब आपकी सब क्रियाएं वही संचालित कर रहे हैं। सात्विकता स्वयं जीवन में इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसकी कोई दूसरी जरूरत नहीं पड़ती। इन सब श्रुतियों के माध्यम से जो भी हमने इन दिनों में जिनको पढ़ा, उनका जो वास्तविक अभिप्राय है वो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसी बात पर भी अगर आप विचार कर लें कि हमारा सोना जागना स्वप्न देखना क्या ये हमारे अपने बस में है। अगर हमारे अपने बस में नहीं है तो फिर ये किसके बस में है और क्यों? तो यहां से आपको अधिष्ठान और अध्यस्त का विवेक, ये भी एक शब्द मात्र है समझने के लिए। इसी को सचमुच में कहो तो तर्क और भाव कहते हैं। ठोस तर्क है, और तर्क जब जीवन में ढल जाता है तो वो प्यार का रूप धारण कर लेता है। जब तक तर्क तर्क रहता है तब तक उसमें नफरत भी है, द्वेष भी है, अपना भी है, पराया भी। लेकिन तर्क के माध्यम से जिन भी चीजों को आप ठीक समझते हो, तर्क में कुछ ना कुछ ऐसा है कि तर्क के माध्यम से आप समझ रहे हो ये ठीक, लेकिन आप ये भी जानते हो कि ये समझते हुए भी ये ठीक मैं इसे कर नहीं रहा, इसलिए भाव जागृत नहीं होगा। क्योंकि भावरित जागृत ही उसी से होगा जब जो ठीक है वो जीवन में ढल जाए। यही तो भाव है, और भाव क्या? जो ठीक जीवन में ढल गया तो फिर गलत आपके सामने टिकेगा नहीं, कभी आएगा नहीं। भले ही वो सात्विक कवियों और ऋषियों की कल्पनाएं हैं, लेकिन उनके इशारे साधक को जीवन में बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। गोपियों के प्रसंग को ही हम लें, गोपियां कृष्ण के विरह में हर श्याम वस्तु को कृष्ण की छाया समझती। अगर श्याम वर्ण के हिरण भी उधर को निकलते हैं तो वो उन्हें गले लगाती, कहती हैं ये उसी वही आ गया है, ये बन के संदेश उससे पूछती, बादलों से बात करती, मोरों से बात करती। जरा सी कोई बात उससे मिलती जुलती भी होती है तो उसको वो गले लगाती। उद्धव संदेशा लेके जाते हैं, और उद्धव का वर्णन ये है कि वो भगवान की उत्सव मूर्ति, अर्थात उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसी, रस्सी भर भी उससे फर्क नहीं है उनका। यहां तक कि वो कपड़े भी वही पहनते हैं, भगवान कृष्ण जो पहनते हैं उनके उतारे हुए कपड़े पहनते हैं, उनके गले की उतराई हुई माला पहनते हैं, अर्थात वो कोई उनको पहचान नहीं सकता कि ये। लेकिन जब उद्धव जाते हैं गोपियों से मिलने, तो वो गोपियां जो जानवरों तक को गले लगाने को तैयार हैं, उद्धव को देखते ही 10 कदम दूर होकर बात करते, उसके सम्मान के लिए वो जरूर बिछा देती हैं अपनी ओढ़नी, चुनरी उतार के बिछा दी, और उद्धव को तो ये था कि बड़ा सम्मान होगा, जाते ही गोपियां सोचेंगी कि भाई ये तो आ गया वहां से, क्योंकि कपड़े भी भगवान जैसे हैं, वो भी वैसे ही हैं और सब कुछ है, और उन्होंने तो उससे ठीक से बात भी नहीं कही, वहां एक ओढ़नी से बिठा दिया उसको, और बैठा के उसको कहती हैं कि ये संसार का नियम ही है कि जब कोई ओछा सा व्यक्ति, जब कोई निर्धन व्यक्ति, जब कोई कमीने स्वभाव का व्यक्ति घर से बाहर जाकर किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तो फिर वो मां बाप की खबर लेने के लिए चपरासी को भेजता, उसके पास फुर्सत कहां कि माता पिता को देखे। अच्छा हो गया तू आ गया, फिर उसे देख के कहती है ये जो कपड़े पहन रखे हैं तूने, ये उसी ने पहनवाए थे तुझे या अपने आप ही कहीं से बना के ले आया, ये दिखाने के लिए कि अब वो कितना अमीर हो गया। अब उद्धव तो बेचारा क्या सोच के आया था, क्या बातें करें, उसको कृष्ण जैसी शक्ल सूरत रूप आंख नहीं उठा पा रहा। कहने का अभिप्राय यह है कि सात्विकता स्वतः जीवन में आ जाती है, गोपियों को अपने अस्तित्व की, सात्विकता की, अपने चरित्र की रक्षा करने की जरूरत नहीं। गोपियां तो चलो पौराणिक कथा है मान ली बात, मीरा तो इस युग में मुस्लिम पीरियड में जबकि समय ही लूटपाट का था और अत्याचार का था, विलासिता का था,

0: उपनिषद का चिंतन वस्तुतः भाव तक ले जाने की एक प्रक्रिया, उपनिषदों के माध्यम से भाव तक पहुंचा हुआ व्यक्ति हरा देता है दुनिया को। शंकराचार्य जी की आप स्तुतियां पढ़ें, जो शंकराचार्य जी ने स्तोत्र लिखे हैं कविता में, काव्य की दृष्टि से उनकी तुलना में कोई साहित्य नहीं है। ये तार्किक व्यक्ति का काम नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये तर्क प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, ये प्रधान, वो लोग असल में भावुकता में जी रहे हैं, भाव में नहीं। ये छोटे स्तर पर भावुकता है, थोड़ी देर के लिए उछाल आया फिर वैसे गए। भाव वो एक प्रवाह है, जब शुरू हुआ तो फिर नीचे लौट के नहीं आता। वो एक ऐसा वो आंतरिक नृत्य है, अंदर हो रहा है, 24 घंटे हो रहा। हम वासी इस देश के, जहां नित प्रीतम से मेल, दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल, तो वहां पर जहां बाती और तेल के बिना दीपक जलना है, ना तो उसके बुझने की कोई उम्मीद है और ना ही उसमें किसी दूसरे की जरूरत है जो लाके तेल डालता रहे देखता रहे, क्योंकि वो उससे जल नहीं। वेदांत वो निश्चित मार्ग है जिसमें भटकने का डर नहीं, क्योंकि ये फजूल की बातों से आपको छुड़वाता है लेकिन भाव तक पहुंचाता। जीवन में आपको स्वयं सोचने का मौका देता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं सचमुच में मैं वही कर रहा हूं जो कह रहा हूं, क्योंकि हम दुखी होते हैं इस बात के लिए कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूं, दूसरे के लिए उसको सुनाते नहीं कि इसके लिए कर रहा हूं लेकिन ये समझ नहीं पा रहा, मेरी बात नहीं मान। वेदांत कहता है कि तू अपने लिए ही कर रहा है, अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहा है, दूसरे के लिए क्या करता है। दूसरे के लिए करना हो तो दूसरे को समझो, समझाओ नहीं। अगर दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो आप वेदांत के चिंतक हो, और अगर आप दूसरे को समझाने की कोशिश करोगे तो फिर आप अहम में जी रहे हो। वो तो अहम की पूर्ति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: गौर्यदूरम् सिन्दूरगौरप्रचारम् सिन्धुराजाधितीरम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देवेश शम्भो कन्दर्पदर्पघ्नमीशम् कालकण्ठम् महेशम् महाव्योमकेशम् कुन्दाभदन्तम् सुरेशम् कोटिसूर्यप्रकाशम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देवेश शम्भो फालप्रदीव्यत्किरीटम् फालनेत्रार्चिषा दग्धपुष्पेषु कीटम् शूलाहतारातिकूटम् शुद्धमर्धेन्दुचूडम् भजे मार्गबन्धुम् शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देवेश शम्भो अप्पय्यमखिवर्यरचितम् पञ्चरत्नस्तवम् मार्गबन्धोरुदारम् नित्यम् पठेद्यस्तु भक्त्या तस्य मुक्तिः करस्थैव सायुज्यरूपा शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देवेश शम्भो इति श्रीमद्भारद्वाजकुलजलधिकौस्तुभ नित्याग्निहोत्रि मीमांसकमूर्धन्य श्रीकण्ठमतप्रतिष्ठापनाचार्य चतुरधिकशतप्रबन्धनिर्वाहक श्रीमदद्वैतविद्याचार्य विश्वजिद्याजि श्रीरङ्गराजाध्वरिवरसूनु श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्ररचिता मार्गबन्धुपञ्चरत्नमाला सम्पूर्ण
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen Shiva Stotras. The title is Atma Arpana Stuti of Srimad Appaya Dikshidhar, also known as Unmatta Panchashat. ஆத்மார்ப்பண ஸ்துதி ஆஃப் ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதர் பிரசன்டட் பை டாக்டர் எம் கோகுலகிருஷ்ண ஐயர். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
0: ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரச்சிதா உன்மத்த பஞ்சாஷத் அபரநாமிகா ஆத்மார்ப்பண ஸ்துதி. ஆத்மனஹ அர்ப்பணம் ஆத்மார்ப்பணம் ஆத்ம நிவேதனம் ஆத்மார்ப்பணேன ரச்சிதா ஸ்துதி ஆத்மார்ப்பணஸ்துதிஹி. உன்மத்தாவஸ்தாயாம் ரசித பஞ்சாஷத் ஸ்லோகானாம் சமாஹார உன்மத்த பஞ்சாஷத்.
4: கஸ்தே போத்தும் ப்ரபவதி பரம் தேவதேவ ப்ரபாவம் யஸ்மாதித்தம் விவித ரசனா ஸ்ருஷ்டிரேஷா பபூவ भक्तिग्राह्यस्त्वमिह तदपि त्वामहं भक्तिमात्रात् स्तोतुं वाञ्छां यतिमहदिदं साहसं मे सहस्व क्षित्यादीनामवयववतां निश्चितं जन्म तावत् तन्नास्त्येव क्वचन कलितं कर्त्रधिष्ठानहीनम् नाधिष्ठातुं प्रभवति जडो नाप्यनीशश्च भावः तस्मादाद्यस्त्वमसि जगतां नाथ जाने विधाता इन्द्रं मित्रं वरुणमनिलं पद्मजं विष्णुमीशं प्राहुस्ते ते परमशिवते मायया मोहितास्त्वाम् एतैः सार्धं सकलमपि यच्छक्तिलेशे समाप्तम् सत्वं देवश्रुतिषु विदितः शम्भुरित्यादिदेवः आनन्दाब्धेः कमपि च घनी भावमास्थाय रूपम् शक्त्या सार्धं परममुमय शाश्वतं भोगमिच्छन् अध्वातीते शुचिदिवसकृत्कोटिदीप्रेकपर्दिन् आद्ये स्थाने विहरसि सदा सेव्यमानो गणेशैः त्वं वेदान्तैर्विविधमहिमा गीयसे विश्वनेतः त्वं विप्राद्यैर्वरदनिखिलैः इज्यसे कर्मभिस्वैः त्वं दृष्टानुश्रविकविषयानन्दमात्रा वितृष्णैः अन्तर्ग्रन्थि प्रविलय कृते चिन्त्यसे योगिवृन्दैः ध्यायन्तस्त्वां कतिचन भवं दुस्तरं निस्तरन्ति त्वत्पादाब्जं विधिवदितरे नित्यमाराधयन्तः अन्ये वर्णाश्रमविधिरताः पालयन्तस्त्वदाज्ञां सर्वं हित्वा भवजलनिधावेशमज्जामि घोरे उत्पद्यापि स्मरहरमहत्युत्तमानां कुलेऽस्मिन् आस्वाद्यत्वन् महिमजलधेः अप्यहं शीकराणून् त्वत्पादार्चा विमुखहृदयः चापलादिन्द्रियाणां व्यग्रस्तुच्छेष्वहः जननं व्यर्थयां येष पापः अर्कद्रोणिप्रभृतिकुसुमैः अर्चनं ते विधेयम् प्राप्यं तेन स्मरहरफलं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः एतज्जानन्नपि शिवशिव व्यर्थयन् कालमात्मन् आत्मद्रोही कर्णविवशः भूयसाधः पतामि किं वा कुर्वे विषमविषयस्वैरिणा वैरिणाहम् बद्धस्वामिन् वपुषि हृदयग्रन्थिना सार्ध

0: दीनो वराक इति रक्ष कृपा निधे माम्। इति श्रीमद्भारद्वाज कुलजलधिकौस्तुभ नित्याग्निहोत्रि मीमांसकमूर्धन्य श्रीकंठमत प्रतिष्ठापनाचार्य चतुरधिकशत प्रबंध निर्वाहक श्रीमदद्वैत विद्याचार्य विश्वजिद्याजि श्री रंगराजाध्वरिवरसूनु श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचिता उन्मत्त पंचाशदपरनामिका आत्मार्पण स्तुति ही संपूर्ण।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Madhyandina Shaka, Adhyayam 11.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

किसी लड़की की मां से पूछा, फाइनल कर दे। लड़की की मां ने कहा, सब कुछ तो ठीक है, इसमें एक कमी है। अब क्या कमी है भाई? बोले, जब हंसता है तो इसके दांत बाहर निकल आते हैं, और तो सब ठीक था, है? गोरा भी ठीक है, हमारी लड़की के बराबर है, पढ़ा लिखा भी है, हमारे लड़की के बराबर है, खाने पीने के लिए भी ठीक है, दो टाइम वो गुजारा लायक खा लेते हैं, दाल रोटी के बराबर, पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, सब कुछ ठीक था। एक ही कमी है इसमें, जब ये हंसता है तो दांत बाहर आ जाते हैं। लड़की के बाप ने कहा कि तब तो कोई समस्या नहीं, इतना ही ना है? बोले, हां यही है, और सब ठीक है। बोले, तब कोई समस्या नहीं, शादी पक्की, हमारी बेटी के साथ इसके शादी पक्की। बोले, क्यों? बोले, तुम्हारी बेटी के साथ शादी होने के बाद जीवन में इसको हंसने का मौका नहीं मिलेगा। शादी होने के बाद हंसने को मौका नहीं मिलेगा, और जब हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा तो दांत बाहर आएंगे ही नहीं, तो कोई समस्या? चलो, जीवन में आप हंसे नहीं हंसे, आज तो हंसे कम से कम, है? उसने कहा कि जैसे तेरे से शादी करने को मेरे जीवन में कभी हंसने का मौका नहीं मिला, उसी तरह तुम्हारी बेटी से उसका शादी होगा, इस लड़के का, तुम्हारी बेटी इस लड़के को हंसने का मौका ही नहीं देगी, तब तो दांत बाहर आने का कोई समस्या ही नहीं है, तो शादी पक्की। जीवन तो इस तरह निकलता है भैया। तो मार्कंडेय ऋषि खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो बचपन है, खाने पीने और खेलने का समय है, खेल रहे, शादी के बाद तो फिर खाना पीना खेलना हंसना सब बंद। नारद जी ने कहा कि अरे, शादी की तू बात करता है, अब तेरी आयु केवल एक मुहूर्त की बची हुई है, मैं देख रहा हूं तेरे भाग्य की रेखाओं को, एक मुहूर्त के बाद तेरी आयु है ही नहीं, अब कहां शादी होगी और कहां तो संसार बसाएगा, हाँ। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि क्यों, मेरी आयु बस एक ही मुहूर्त है? बोले, हां, अब कोई, तब क्या करें? बचने का और कोई उपाय है? नारद जी ने कहा कि दुनिया में बचने का उपाय नहीं है। अरे, तब तो एक मुहूर्त के बाद मुझे मरना ही पड़ेगा। बोले, हां, पक्की बात, मरना पड़ेगा। बचने का कोई उपाय हो तो बोलो। तो नारद जी ने कहा कि एक उपाय है, वह है भगवान शिव के शरण में जा। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी शिव भक्त विद्वान हुए, उन्होंने पशुपति अष्टक करके 8 श्लोकों का स्तोत्र लिखा है पशुपति के बारे में। काठमांडू में है ना पशुपति मंदिर, है? दर्शन करने जाने की इच्छा है, आओ, वहां अपना आश्रम है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है रहने खाने की, हम घुमा देंगे, दर्शन करा देंगे, वहां आना तुम्हारा काम है, रहने खाने की सारी व्यवस्था आश्रम करेगा, पशुपतिनाथ। उसमें एक श्लोक लिखा है, न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम अवति को पिनकालगतम वसम भजत रे मनुजा गिरिजा पतिम। हे मनुष्य, काल वसम गतम

समय यमराज के वश में तुम पहुंच जाते हो, उस समय यमराज से बचाने वाला तुम्हारा कोई नहीं होगा। न जनको न जननी न च सोदरो। बाप तुम्हारी रक्षा जब तक यमराज नहीं आए तब तक तो वो खाने पीने पहनने की व्यवस्था करके करेगा, लेकिन जिस समय यमराज तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस समय तुम्हारे पिता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं बचा सकता है। हाँ, न जननी, तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी मां भी जिस समय यमराज सामने खड़ा होगा तुम्हारे लेने के लिए, तुम्हारी मां भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती है। न जनको जननी न च सोदरो सह उदर। एक ही पेट से पैदा हुआ हुआ भाई सह उदर, तुम्हारा भाई सहोदर भाई भी, और बाह्य जो शत्रु हैं उनसे रक्षा कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन जब यमराज सामने खड़ा होगा तो उस समय तुम्हारा भाई भी तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकता। न तनयो, तुम्हारे खुद अपने पैदा किए हुआ बेटा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। न च भूरि बलम कुलम। खूब काजू किशमिश बादाम केसर दूध खा खा के दंडवत पेल पेल के शरीर में ताकत बनाओ चाहे जितना भी। दारा सिंह भी गया, गया कि नहीं, गया कि नहीं दारा सिंह? क्या शरीर बनाया था उसने, क्या ताकत थी। भूरी बलम कुलम, अपने शरीर में चाहे जितना भी ताकत बना लो तुम, लेकिन जिस समय यमराज तुम्हारे सामने खड़ा होता है तुम्हारे अपने शरीर की ताकत भी उस यमराज से तुमको बचाने में समर्थ नहीं है। फिर कौन बचाएगा? आवति को पिन काल गतम बसम। काल के बस में हो जाने के बाद उसके बस से छुटाना किसी की सामर्थ्यता में नहीं है, तब तो फिर मरना निश्चित है। बोले नहीं, एक व्यक्ति है वह तुम्हें बचा सकता है। कौन है भाई? गिरिजापति भजत रे मनुजा गिरिजापति। यदि जीवात्मा सबके आशा छोड़कर, सबका भरोसा छोड़कर एकमात्र पार्वती पति भवानी पति गिरिजापति भगवान शिव के अनन्य शरण में जाता है, तब यमराज से भी छुटा सकते हैं, बचा सकते हैं, वही बचा सकते हैं और नहीं बचा सकते। नारद जी ने जब ये बात कही दी, दो एक मुहूर्त में तुम्हारी आयु समाप्त है, यमराज आएगा और ले जाएगा, तुम्हारा खेल खत्म। बोले मुझे अभी जाना ही नहीं है। बोले तुम्हारे कहने से छोड़ेगा यमराज? यदि तुम्हें जाना नहीं है और रहने की इच्छा है तो यमराज से पकड़कर रक्षा करने वाला बचाने वाला दुनिया में एक ही है, वह है गिरिजापति, उसके शरण में जाओ, तब तो बच सकते हो, नहीं तो खत्म है तुम्हारी आयु। इतना तो नारद जी ने कह दिया और चल पड़े। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि आसपास में कहीं शिव के शरण में जाने लायक कहीं कई है, तो देखा एक मंदिर था और वहीं शिव मंदिर था। खेलना तुरंत बंद कर दिया मार्कंडेय ऋषि ने। नारद जी ने कहा है तो सही कहा, छोड़ दिया खेलना, गए
मंदिर के अंदर गए, आसन लगाकर अनन्य भाव से शिव के शरण में चले गए। तब तक तो यमराज आ गया, मुहूर्त समाप्त हो गया, प्रारब्ध समाप्त हो गया, आ गया यमराज। हे मार्कंडेय, तेरा समय समाप्त हो गया है, अब चलो हमारे साथ। बोले हम नहीं जाएंगे, हमको अभी और यहां रहना है, और खेलना है, बहुत काम करना है, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे से। बोले आज तक मेरे अनुशासन का किसी ने उल्लंघन करने का हिम्मत नहीं किया बेटा, और तुम्हारे कहने से हम छोड़ेंगे तुमको? हा, मंदिर के अंदर भी हमने नहीं छोड़ा है, घर के अंदर भी नहीं छोड़ा है, बाहर भी नहीं छोड़ा है, कहीं भी नहीं छोड़ा है। हम आवे और हमारे अनुशासन को उल्लंघन करे आज तक संभव नहीं हुआ है, चलो। बोले अभी तो हम भगवान शिव की पूजा करने बैठे हैं। बोले पूजा करने से यदि बच जाए तो सारी दुनिया बहाना बनाती रहेगी, हमारा अनुशासन ही खत्म हो जाएगा। इस बहाने से हम छोड़ने वाले नहीं भैया। तो जब यमराज ने अपने पास और अंकुश का प्रयोग करने की तैयारी किया, मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को अंकमाल किया, पकड़ लिया। महाराज हे शिवा, ये देखो ना, ये जबरदस्ती कर रहा है, हम जाना नहीं चाहते हैं, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, पूजा जप ध्यान करना चाहते हैं, और आपके आश्रय में हम रह रहे हैं, और आपके ही आगे आपके देखते देखते वो जबरदस्ती करे। और हमको तो नारद जी ने कहा था कि तुम ही रक्षा करोगे, इसलिए हमने खेलना बंद कर दिया और तुम्हारे शरण में आए थे। इसके बावजूद भी तुम रक्षा नहीं करोगे तो फिर कल से तुम्हारा भजन कौन करेगा? बोलो। जहां मार्कंडेय ऋषि ने ये भाव शिव जी के सामने व्यक्त की, वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज के छाती में एक लात मारी। यमराज तो वहीं मर गया, मर गया यमराज। वाह क्या काम बन गया, मार्कंडेय ऋषि बच गए, यमराज मर गया और मार्कंडेय ऋषि बच गए। इतने में सारे देवता आ गए और भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज ये तो गलत हुआ, महाराज यमः संयमतामहम। भगवान श्री कृष्ण आए और कहा, सारे जगत को अनुशासन में रखने वाला यही एक था, दुनिया तो आज तो इससे भी नहीं डरने वाले हैं, डरते नहीं है तो फिर तो कैसे अनुशासन में रहेगा जगत। इसी के चलते थोड़ा बहुत जगत अनुशासित हुआ हुआ है और ये भी अपने खत्म कर दिया तो डर का मृत्यु, फिर डर और भय तो खत्म हो गया, व्यक्ति इतना उद्दंड हो जाएंगे, जगत की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। महाराज इसको जीवन दान देना पड़ेगा। बोले एक ही शर्त पर मैं इसका जीवन दान दूंगा, जो मार्कंडेय ऋषि की तरह अनन्य भाव से मेरे शरण में आएगा उस पर ये जबरदस्ती न करें, उस पर ये जबरदस्ती न करें। जो मेरे शरण में ना आकर अन्य के शरण में घूमते हो तो उसको भले कर ले, मेरे भक्तों पर ये अति न करे। ये शर्त मंजूर है तो इसको मैं जीवन दान देता हूं। बोले महाराज हम वचन देते हैं कि ये उद्दंडता नहीं करेगा, आप जीवन दान दे दो। तो भगवान शिव ने मृत्यु को यमराज को जीवन दान दिया और कहा, खबरदार आज के बाद तुम उद्दंड होकर मेरे भक्त पर तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। उस दिन से भगवान का नाम हुआ मृत्युंजय। मृत्यु
मृत्यु को जीता जिनने, इसलिए उसका नाम पड़ा मृत्युंजय। उस प्रसंग को शंकराचार्य जी स्मरण कर रहे हैं, महाराज ऐसा कठोर हृदय वाला यमराज और उस पर आपने लात मारी, कहां आपका चरण कितना कोमल और कहां यमराज का हृदय कठोर, आपके चरण में कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। मैं देख रहा हूं जूता नहीं पहना था आपने उस समय। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, मैं गप नहीं कर रहा हूं, यही शब्द प्रयोग किया है। जूता पहना होता तो भी कुछ आराम मिलता, जूता भी नहीं पहना था, नंगे पांव से अपने यमराज के छाती में प्रहार किया था, क्या कष्ट हुआ होगा महाराज। मुझे लगता है कि ऐसा काम करने वाले आपको एक जूते की आवश्यकता है। और वो जूता मेरे पास है, शंकराचार्य मोची है वो, मोची है, जूता वाले है ना उसले, उन्होंने कहा वो जूता मेरे पास है, मैंने बढ़िया जूता बना के रखा है आपके लिए। बक्षस्ताड़न मंतकस्य कठिन, ये अंतकस्य कठिन बक्ष, यमराज के जो कठोर हृदय में आपने जो लात मारी है, यमराज मर तो गया लेकिन उससे आपको कितना कष्ट हुआ है। यमराज मरने का दुख हमको नहीं, आपके चरण में जो दुख हुआ है ना उसकी हमको चिंता है। दूसरी बार हमने देखा है, अपस्मार सम्मर्दनम, एक राक्षस हुआ है उसका नाम है अपस्मार। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव ने, उन्होंने अपने पांव के नीचे उसको दबा रखा है आज भी, हाँ छोड़ा नहीं है। और अपस्मार भी बड़ा कठोर राक्षस था, उनको दबा रखा है उन्होंने, वो भी पांव से ही दबाया है। महाराज नंगे पांव से दबाया है, ये अपस्मार इतना कठोर राक्षस और नंगे पांव से उसको आप दबा रहे हो, इसीलिए एक जूते की आवश्यकता तो है आपको। हम देख रहे हैं कि एक जूते की आवश्यकता है। तीसरी बात, जिस समय रावण ने कैलाश को उठाया और रावण ने यह सोचा कि ये दिन दिन रोज रोज लंका से आओ, कैलाश आओ, पूजा करो, फिर लंका जाओ, ये झंझट कौन करेगा, बलात् कैलासेपि त्वद अध वसतौ विक्रमयता। रावण ने कहा कि मेरे ये 20 हाथ में इतनी ताकत है कि कैलाश पर्वत को मैं पूरा उखाड़कर ले जाके लंका में रख लूंगा, तो रोज ये आने जाने के झंझट से तो मुक्ति हो जाएगी ना। हम लोग भी यही करते हैं, नजदीक के मंदिर में जाना थोड़ा समस्या होता है तो घर में मंदिर बना लेते हैं, तो घर में मंदिर बनाओ तो जब उठो तब पूजा करो, मंदिर में बाहर के मंदिर में तो पुजारी के अनुसार अनुशासन से समय में जाना पड़ेगा। घर का मंदिर हो तो जब 12 बजे उठे तो वही ब्रह्म मुहूर्त हो गया ना, अपना घर का मंदिर है, चाहे 12 बजे पूजा करो चाहे 1 बजे पूजा करो, कौन बोलने वाला है। बाहर के सार्वजनिक मंदिर में तो बहुत टोक टाक करेंगे। रावण ने भी यही सोचा कि कौन झंझट करे, रोज कैलाश आओ पूजा करो जाओ, पूरा कैलाश को ही उठा के ले जाता हूं लंका में रख लेता हूं, तो आराम से अपने घर की देवता जब चाहो तो पूजा करो।
बलात्कैला सेपि तद अधिवसतौ, नित्य निरंतर निवास करने वाले उस कैलाश पर्वत को ही विक्रमयति। रावण ने उखाड़ने की कोशिश की और उखाड़ ही लिया था, उड़ाया, तब तक तो पर्वत हिलने लगा। ये क्या बात है, ये कभी भी ना हिलने वाला पर्वत, महाप्रलय में भी ना हिलने वाला पर्वत, भूचाल में भी ना हिलने वाला पर्वत, एक आज अचानक क्यों हिल रहा है? भगवान शिव ने ध्यान करके देखा तो रावण ने तो उखाड़ चुका था, उठा चुका था। भगवान शिव ने अपने पांव निकाली आसन में से और उस पर्वत के चोटी पर जोर से दबा दिया। पुष्पदंताचार्य जी ने तो जोर भी नहीं कहा है, आला सब प्यंगुष्ठ धीरे से रख दिया है उस पर्वत के चोटी में अंगूठा, उतनी से रावण ऐसा दब गया, जिस पर्वत को उठाने के बाद जो गड्ढा हुआ था उसी गड्ढे में रावण पड़ गया और ऊपर पर्वत आ गया। ले दब गया रावण। नारद जी घूमते हुए गए, देखा रावण तो दबा हुआ है पर्वत से। ऐ रावण, ये क्या हुआ, ये पर्वत के नीचे तू कैसे आ गया? रावण ने कहा कि महाराज, ये अपनी मूर्खता से आ गया। बोले कैसे, तू तो बड़ा विद्वान था, ये मूर्खता कैसे कर ली? बोले हमने ऐसे ऐसा विचार किया था, पर्वत को ले जाऊं लंका में, उखाड़ तो लिया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मैं इसी गड्ढे में पड़ गया, इस पर्वत अब मेरे ऊपर पड़ गया है, अब यहां से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, कोई उपाय है तो बताइए महाराज। साधनोति पर कार्यम इति साधु, आप तो साधु है, दूसरे के उपकार करते चलते रहते हो, इस संकट से बचने का कोई उपाय आपको मालूम है तो बता दो महाराज। बोले एक उपाय है। क्या है, जल्दी बताओ। बोले भगवान शिव जो है संगीत और नृत्य के बहुत प्रिय है, उनको कोई स्वर सहित संगीत गा लेता है तो उनसे नाचे बिना रहा नहीं जाता है। तुम बढ़िया श्लोकों से, बढ़िया छंदों से, बढ़िया स्वर से तुम गाओ, ये भगवान ने दबा रखा है पहाड़, इसलिए तू दबा हुआ है, और तू बढ़िया गाने लग जाएगा, उनकी स्तुति करेगा तो वो नाचने लग जाएंगे, वो इस बात को भूल जाएंगे कि रावण को दबाने के लिए पर्वत को दबाया है। सच महाराज? बोले हां। तो कविता की रचना तो मैं कर सकता हूं, गा भी सकता हूं, बजाने के लिए मेरे पास वीणा तो है ही नहीं, आप अपना वीणा दे दिए, खबरदार हमारी वीणा किसी को छूने नहीं देते हम। बोले ठीक है, छूने ना दो, आप यहीं बैठकर वीणा बजाओ, मैं गाऊंगा। बोले हमको फुर्सत नहीं है, हमें उसकी फुर्सत नहीं है, फिर हम कैसे गा तो लेंगे तो बजाना भी पड़ेगा ना। बोले एक काम कर, तेरे 10 सिर है ना, 10 में से एक निकाल ले गर्दन से बाहर, और 20 हाथ है, एक हाथ निकाल ले और ये सिर में हाथ जोड़ दे तो वीणा हो गया कि नहीं? वीणा कैसा होता है, नीचे बड़ा गोला होता है और जो उंगलियां हैं वो वीणा के बटन है ऊपर, और तुम नस निकाल ले हाथ में से, जो बड़े बड़े नस हैं वो तार बना ले, बस फेरी बाकी 19 हाथ तो रहेंगे ना तेरे, 9 मुख भी रहेंगे, 19 हाथ भी रहेंगे, उन 9 मुखों से बढ़िया कविता बना के गाओ,
20 हाथों से बढ़िया वीणा बजाओ, 2 हाथों से ताली बजाओ और 17 हाथों से वीणा बजाओ, वाह क्या कहना। और जरा गाओ तो सही भगवान शिव की स्तुति, फिर देख कमाल क्या होता है। रावण ने कहा सच? बोले सच। नारद जी ने कहा बिल्कुल पक्की बात है, हम तो जा रहे हैं, अब तो करना हो तो कर। नारद जी चले गए, उपाय बता दिया। रावण ने वही किया, हाँ, एक सिर निकाल ली, एक बाजू निकाल लिया, जोड़ लिया और नसें निकाल ली और वीणा बना ली और वीणा बजाना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया। जटा टवी गल जल प्रबल पालक, जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्जरी

0: मम। इस तरह उसने बढ़िया सुंदर श्लोकों को गाता रहा और बजाता रहा। भगवान शिव के कान में जब ये संगीत पड़ी तो नटराज तो थे ही, उनसे रहा नहीं गया, उतर गए आसन से, नाचना शुरू कर दिया। जैसे शिव जी ने उसको दबाने का संकल्प छोड़ा और नाचने लग गए, पहाड़ तो हल्का हो गया। रावण के लिए वो पहाड़ क्या था, वो तो शिव के संकल्प से भारी हुआ था, नहीं तो रावण के लिए वो पहाड़ कुछ भी नहीं था। जब उनका संकल्प गया और नाचने लग गए तो भूल गए कि मैंने रावण के लिए पर्वत को दबा रखा है। नाचने लगे, नाचते नाचते रावण बाहर निकल आ गया, हाथ जोड़कर गाना बंद कर दिया। शिव जी ने देखा कि किसने गाया था, किसने बजाया था, सामने रावण खड़ा है। महाराज मैंने ही गाया था, मैंने ही बजाया था, और ये पहाड़ किसने वो उखाड़ा था, बोले वो भी मैंने ही किया था।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: पर कई बार उससे भी बदनामी झेलनी पड़ती है, ऐसा होता है। एक बड़ा भारी विद्वान, बड़े अच्छे विद्वान थे, हमेशा वेदाध्ययन किया करते थे, गौशालाएं थी, गायें थी। उन्होंने एक ग्वाला को गाय चराने को लगा दिया। ग्वाला दूध निकाल के ब्राह्मणों को देकर गाय चराने के लिए ले जाता। एक दिन संजोग से उसी गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ के कुछ पाठ कर रहा था। इतने में क्या देखता है कि ग्वाला गाय को डंडे से प्रहार कर रहा। बेचारी गाय अपने बछड़े के वात्सल से गौशाला की तरफ आना चाह रही और वह बार बार डंडे से उसका मुख जंगल की तरफ कर रहा। ब्रह्मचारी को रहा दे गया, उसने ग्वाला को डांटा, उसके हाथ से लाठी छीन ली, कहा कि तू चले जा। वह चला गया और सीधे गुरुकुल आया और विद्वानों को कहा कि जो आपकी गायें हैं इनको मैं चराना चाहता हूं, क्योंकि ये ग्वाला जो है ना गौ माता को बड़ा प्रताड़ित करता है, ये मुझसे सहन नहीं होता है। मैं निस्वार्थ गौ माता की सेवा करूंगा, मुझे शुल्क भी नहीं चाहिए, बस केवल मुझे आप लोग भोजन दे देना। विद्वान ब्राह्मण बहुत खुश हो गए। हर दिन वह गायों को जंगल में ले जाता, चराता, खाज करता, पानी पिलाता। इसके बाद जब गायें बैठ जाती तो स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करता। गाय इतनी प्रसन्न इससे रहती थी कि जरा सा गायों के पीठ पर खाज करता कि अपने आप गायें दूध देना शुरू कर देती, दूध भी बहुत होने लगा। ब्राह्मण और भी खुश हो गए। तीन चार वर्ष के बाद वही ग्वाला अवसर पा करके शिकायत किया कि वह जो ब्रह्मचारी गौ चराने गायों को ले जाता है, वह जंगल में दूध निकाल करके और उसका दुरुपयोग करता है, कुछ बेच देता है, कुछ शिवलिंग के पिंडी पैसे बहा देता है। ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया कि हमारे सामने तो बहुत भक्ति करता है कि मैं निस्वार्थ गौ माता की सेवा करूंगा, और उधर जो है दो नंबर काम शुरू कर दिया, दूध निकालता है और शिवलिंग के पिंडी पर डालता है, इधर उधर करता है। तुरंत ब्रह्मचारी के पिता को बुलाया और डांटा कि तुम्हारा बेटा बड़ा भारी अधर्म कर रहा, चोरी कर रहा, हमारे यहां भक्ति करता है, निस्वार्थ सेवा कर रहा, वहां जो है दूध निकाल करके सप्लाई करता है, मंदिरों में भेजता है, शिवलिंग की पूजा करता है। पिताजी ने कहा कि जरा हमें देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। पिता जो है चुपके से पीछे पीछे जंगल में गया और एक पेड़ के ओट में छिपके देखने लगा कि क्या करता है। पिता ने देखा कि जब गायें जो है पानी पीकर आराम से बैठ जाती हैं तो हमारा लड़का स्नान करता है, स्नान करने के बाद गायों को खड़ा करके खाज करता है और गायें पात्र में दूध अपने आप भर देती है। इसके बाद उस दूध को मंदिर में ले जा करके भगवान के पिंडी पर चढ़ाता है एक एक घड़ा। पिता को बहुत क्रोध आया, ये बड़ा जो है अनर्थ कर रहा है। तुरंत एक बड़ा भाई डंडा लाया और डंडा ला के सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, लड़का जवान है, सीधा मारूंगा तो कैसा ना मुझे ही मार दे। सोचा कि पहले इसको बैठ जाने दो। जैसे ही वह ब्रह्मचारी दूध चढ़ाने के बाद स्तोत्र पाठ करके ध्यानस्थ हो गया, बैठ गया, सोचा कि अब इसकी खबर लेनी चाहिए। बड़ा भाई डंडा ले गया और चार पांच डंडे मार दिया। आंख खोला, पहले तो उसको आश्चर्य हुआ कि हमारे पूजा में विघ्न कौन खड़ा कर रहा। उसी डंडे से ऐसा प्रहार किया पिता के पैर पर कि पिताजी का पैर ही कट गया, बेहोश गिर पड़े। जब देखा तो उसके पिता, इसको बड़ा दुख हुआ कि हमारे पिताजी मैंने पहचाना नहीं, क्रोध में मार डाला। तुरंत भगवान शंकर वहां दर्शन देते हैं और उसके पिता को समझाते हैं कि देख ये हमारी प्रेरणा से सत्कर्म कर रहा था, तुझे भ्रम हो गया। तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम दूसरे के कहने में आ जाते हैं और आ करके ऐसा वहम हो जाता है ना कि बिना विचारे ही प्रतिक्रिया करते हैं। और अक्सर जहां पर भी विवाद मतभेद होता है 99% तो केवल वहम होता, भ्रम होता है। बिना हम सच्चाई का जांचे पड़ताले जब कार्रवाई करते हैं तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो यहां पर भी भगवान शंकर तो जगत की प्रसन्नता के लिए तांडव नृत्य करते हैं, परंतु तमाम लोगों की दुर्स्थिति बन जाती है। इसलिए पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं कि वाम नटसी वामय विभूता, आपका तांडव नृत्य है जगत की रक्षा के लिए, परंतु विपरीत यहां पर अवस्था बन जाती है। तड़ी आघाते से तांडव बनाया, जैसे कि माता पिता बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं कि भाई तू पढ़ा कर, उस डांट फटकार के पीछे है बच्चे की सुरक्षा, हित कल्याण है, पर बालक समझ नहीं पाता है। छोटे बच्चे के जब कपड़े निकालती है माँ तो बच्चे रोने लग जाते हैं, उन्हें पता नहीं कि माँ नहा धुलाकर नया कपड़ा पहनाने जा रही है। हम लोग उससे भी अज्ञानी है ज्यादा। जैसे कि जब तक धान का छिलका नहीं निकालेंगे तब तक चावल नहीं निकलेगा, उस पर आघात करना पड़ता है। ऐसे यहां पर भी जो जीवात्मा के ऊपर ये आवरण है, अविद्या का, वासना का, कामना का, ये आसानी से जब नहीं छूटता है तो भगवान शंकर को तांडव करना पड़ता है। तांडव के आघात से ये पत्थर भी पिघल जाता है। जैसे पूज्य अखंडानंद महाराज का हम लोग कैसे सुन रहे थे ना कि जिसके हृदय में भगवान के चरित्र के प्रति प्रीति नहीं है, स्नेह नहीं है, श्रद्धा नहीं, वह हृदय हृदय नहीं बल्कि पाषाण है। तो भगवान शंकर पाषाण को भी सीधा करने जानते हैं तो आघात करते हैं, और उसी आघात से ये जीव का जो ये पंच मल है ये मल छूटता है। और जब मल दूर होता है तब जाकर ये अपने स्वरूप की पहचानता है। तो तांडव नृत्य करने के बाद तब जाकर के ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। तो उसको भी देख ले, हम लोग उच्चारण कर लें।

0: जब उन मलों का नाश हो जाता है जो ज्ञान के प्रतिबंधक है, जैसे दीवाल बाहर के दृश्य दर्शन का प्रतिबंधक है। बाहर के दृश्य का दर्शन तभी हो सकता है जब दीवाल रूपी प्रतिबंधक हटे, या हम दीवाल को तोड़ें या दीवाल के बाहर जाएं, दो ही उपाय है। ऐसे ही ज्ञान का जो प्रतिबंधक मल विक्षेप आवरण है, वेदांत के अनुसार, सांख्य के अनुसार है कि प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान नहीं होना। सैवागम के अनुसार पंच ये जो मल है ये कारण है, आलोम मल इत्यादि। इन प्रतिबंधकों को हटाने के लिए जब भगवान शंकर ने तांडव का आघात किया, उस आघात से जीवात्मा को पहले बहुत पीड़ा होती है। जैसे जब आप घर से यहाँ चलते हैं ना तो बहुत पीड़ा लगती होगी, लोग कहते भी होंगे कि ये प्रेम पूरी क्यों रोज रोज जाते हो, क्या तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, जितने दिन से जा रहे हो। लोग व्यंग भी करते हैं, ताना भी मारते हैं कि आराम से सोने भी नहीं देते, स्वयं सोते भी नहीं। अब आप मान लो छोटे से फ्लैट में है, 10 लोग रहते हो, यदि आपको प्रेम पूरी आना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा। अब 4 की अलार्म की घंटी लगाएंगे तो बाजू वाले को तकलीफ होगी, घंटी बजेगी। परंतु आपको निश्चय है कि हमें पहुंचना ये 7:30 बजे, तो आप हर तरह की तकलीफ को सहन करके अपने मित्रों की बात भी सुनते हैं, घर वालों के भी सुनते हैं, क्योंकि उन्हें तो 8 बजे उठना है, आपको उठना है 4 बजे। व्यवहारिक जीवन में तो सारे लोग साथ देंगे, यदि कहीं नाच गान तमाशा देखने जाना हो ना, बोलेंगे हम भी चलते हैं। परंतु प्रेम पूरी आना हो, ज्ञान गंगा में स्नान करना हो, तो वहां सब कन्नी काट लेते हैं। यही आघात है। आप शारीरिक सामाजिक हर तरह के आघात को सहन करके, उससे बड़ा है तकलीफ मन को मारना। ये मणिराम भी कई बार कहता है कि क्या करने, एक दिन ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन ही जाएंगे तो क्या होगा। पर भोजन के लिए आप कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, एक दिन भोजन नहीं करेंगे, आज अच्छा शिवरात्रि का दिन है या नवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाए, कोई सोचता कभी? बिल्कुल ठीक टाइम पर होना चाहिए, नहीं होगा तो विक्षेप। स्वयं जो है भागवत में आता है, पीबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत के रस को कब तक पीना चाहिए, तो कह दिया आलयम। आलय मतलब कि लय पर्यंत, जब तक कि शरीर में प्राण है तब तक। और लय शब्द का दूसरा अर्थ है कि आत्यंतिक लय। लय जो है ना 4 तरह से होता है, एक तो है नित्य, दूसरा है नैमित्तिक, और तीसरा है प्राकृतिक, और चौथा है आपका आत्यंतिक प्रलय। नित्य लय सुसुप्ति है, सुसुप्ति न आए तो आप जागृत का आनंद नहीं उठा सकते, कोई व्यवहार नहीं कर सकते। नित्य लय जो सुसुप्त है, इस लय में जाने के बाद जो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, तभी जाकर के हम लोग जागृत के व्यवहार को संपादित कर पाते हैं। दूसरा है आपका नैमित्तिक लय, ब्रह्मा जी के दिन रात्रि के कारण से लय होता है। तीसरा है प्राकृतिक लय, जिसमें कि समूचे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, यह प्राकृतिक। जो तीसरा आपका प्राकृतिक है, या जो दूसरा आपका नैमित्तिक है, इस लय के बाद भी संसार भाव की प्राप्ति होती है। जब तक कि हम आत्यंतिक प्रलय का अनुभव न कर लें, आत्यंतिक लय है मोक्ष, और यह होता है तत्व ज्ञान से। यदि तत्व ज्ञान हो गया तो हमेशा के लिए आनंद ही आनंद है। इसलिए कह दिया पिबत भागवतम रसमालयम। जब तक आत्यंतिक प्रलय का अनुभव न हो जाए, ये लोग घबराते हैं ना लय से। लय मतलब कि समझो कि आत्म विगलन, मय का गलना, मय का मरना, मय का समाप्त होना, यही लय है। सुषुप्ति में मय संपूर्ण रूप से विगलित हो जाता है। आप यह पता नहीं होता है कि मैं सोया हूं। यदि इतना भी ज्ञान हो कि मैं सोया हुआ हूं तो भी सुषुप्ति नहीं आएगी। संपूर्ण रूप से अपने सीमित अहंता का, अभिमान का, मैं पने का विसर्जन ही सुषुप्ति है, वही आनंद है। पर यह जो है नित्य हो रहा है, प्रारब्धानुसार होता है। परंतु जो आत्यंतिक विलय है, हमेशा के लिए मय का जो विसर्जन है, उसके विसर्जन से आप परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। तो तब तक भगवत संबंधी चर्चा सुनना सुनाना चाहिए। स्वामी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। संसार में रहते हुए भी किस प्रकार से हम आनंद का अनुभव करें, इस सूत्र दिया भगवान ने कि मच्चिता मदगत प्राणा। अपने चित्त को, प्राण मल्ल की कर्मेंद्रियों को मुझ में समर्पित कर दो, और बोधयंतः परस्परम, परस्पर उसी आत्मा की चर्चा करे, भगवान की लीला का चर्चा करे। इससे फायदा क्या होगा? लोग फायदा कहते हैं ना, फायदा क्या होगा? कोई भी काम करने के पहले सबसे पहले हम पूछते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि तुष्यन्ति च रमन्ति च, परम संतोष और परम आनंद की उपलब्धि होगी। हमारे पास अथाह धन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी संतोष नहीं होता है, क्योंकि संतोष का सूत्र है भगवत चर्चा। और इसको तब तक करना जब तक कि आत्यंतिक लय की अनुभूति न हो जाए, और जब तक अनुभूति न हो तब तक करते रहना चाहिए। बीच में छोड़ देंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जैसे मान लो आपको प्यास लगी है, कुआं खोदना है, थोड़ा यहां गड्ढा किया, थोड़ा वहां किया, थोड़ा यहां किया, जल निकलेगा कहीं से नहीं, बल्कि परिश्रम बेकार जाएगा। जब आप एक ही जगह तत्परता से खोदते जाएंगे तो निश्चित जल की प्राप्ति होगी। ऐसे हम लोग क्या सोचते हैं कि जरा जो रूप से आनंद आ जाए, रस से, गंध से, स्पर्श से, जरा दुनिया का भी आनंद ले लें, दुला इधर का भी, तो नहीं होगा। आप तत्परता से यदि कोई नियम लेते हैं भगवत चर्चा की, तब तो सफलता है। और यदि आप भगवत चर्चा नहीं करेंगे तो इसके व्यतिरिक्त दुनिया की चर्चा जबरन होगी। आप नहीं चाहेंगे तो भी होना ही होना है। आप कितना भी संकल्प कर ले, प्रतिज्ञा कर ले कि हमें अनात्म चर्चा नहीं करनी है, फिर भी होगी। आप करके देखना। आप कमरे में जो है दरवाजा खिड़की बंद करके, लाइट बंद करके बैठ जाना, ये मणि राम शुरू कर देगा। बहुत पुरानी पुरानी बातें जिसका कोई संबंध नहीं, और कई बार तो क्रोध भी आता है, कभी कभार हमें भी होता है, मतलब साल में 2-4, 10-20 दिन होता है जब खाली होते हैं ना, तो जब सोचते हैं तो पुरानी से पुरानी बात याद आ जाती है। और क्या होता है कि हमें ऐसा उस समय कहना था, ऐसा करना था, जो बात बीत गई उसकी याद करने से क्या फायदा। पूज्य प्रातः स्मरणीय खन्ना जी महाराज कहा करते हैं कि मनुष्य या तो भूत में चक्कर काटता है या भविष्य में, वर्तमान में तो बिरले होते हैं। भूत मतलब कि 20 वर्ष पहले ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, भविष्य मतलब कि आगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये वर्तमान तो अपने हाथ से निकल रहा है। ये जो आज का तारीख है 6 दिसंबर है ना, 6 दिसंबर 2008, इसको कोई नहीं पकड़ रहा। कितनी बढ़िया भगवत चर्चा हो रही है, ऊपर भागवत कथा कुछ जोधा जी की हो रही है, कुछ किसी को ध्यान नहीं। परंतु हम 10 वर्ष आगे की बात करते हैं, जिससे मैं न्याय प्राप्त करता था काशी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न्याय विभाग के अध्यक्ष थे वशिष्ठ त्रिपाठी। ये बार बार कहा करते थे कि जहां पाठ चलता है ना वहां बुद्धि लगाओ तो समझ में आएगा। ये 2 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर पीछे लगाने से पंक्ति नहीं लगेगी। वो हमेशा जब क्रोध करते थे डांटते थे तो यही बोलते थे कि जहां पाठ चल रहा स्वाध्याय सत्संग वहां दिमाग को लगाओ। और होता क्या है, विद्यार्थी का पीछे की बात याद करता है या तो 2 किलोमीटर आगे का, तो जो चल रहा वो भी निकल जाता है, वही हम करते हैं। इसलिए भगवान ने सावधान कर दिया कि तत्परता से करे और सातत्य ने करे। भगवान पतंजलि जी ने योग दर्शन में लिखा है कि 3 वहां बात बताई, सातत्य, दीर्घ काल और नैरंतर्य। कोई भी काम सातत्य न हो और दीर्घ काल हो, आदर बुद्धि हो, तब जाके दृढ़ भूमि होगी, वह परिपक्व होगा। जैसे मान लीजिए सत्संग सुनते हैं तो सत्संग में भी दीर्घ काल हो, इसके बाद निरंतरता हो, और तीसरी कसौटी है आदर बुद्धि। आदर बुद्धि नहीं है तब भी बात समझ में नहीं आएगी। तो आदर मतलब श्रद्धा विश्वास हो, निरंतर हो, और इसके बाद दीर्घ काल, तब जाकर वह चीज परिपक्व होता है। आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं उसके लिए भी बड़ा हमें आदर करना पड़ता है, श्रद्धा रखना पड़ता है। किसी सेठ से मान लो पैसा निकलना हो तो कितनी श्रद्धा करनी पड़ती है, जीअरी करनी पड़ती है, हर बात सहना पड़ता है। ऐसे ही ठंडी गर्मी बरसात या जो भी समाज की अव्यवस्था व्यवस्था है उसको भी झेलना पड़ता है, मन को भी संयमित करना पड़ता है, तब जाकर के भगवत चर्चा मन लगता है। देखिए संसार में 2 ही चर्चा हो सकती है, आत्म चर्चा अनात्म चर्चा। अनात्म चर्चा करेंगे तो अनात्म चर्चा के पास जो है वही मिलेगा आपको। किसी सोनार के पास जाएंगे तो उसके पास सोने के आभूषण है, सोने के आभूषण उपलब्ध होंगे। और किसी पंसारी के पास जाएं तो उसके पास राशन पानी वही देगा। इसी तरह से अनात्मालय के पास दुख है, अनित्यत्व है, परिवर्तनशीलता है। तो अनात्म चर्चा करेंगे तो निश्चित ही दुख हासिल होगा, और आत्म चर्चा करेंगे तो आत्मा है सचित आनंद, उसकी उपलब्धि होगी। ऋषिकेश में ब्रह्म प्रकाश जी अच्छे संत हो गए, उनके पास कोई भी आए और जरा सा भी चर्चा करे तुरंत बोलते थे कमरे से बाहर चलो। सीधा उनका नियम था कि कोई गीता के चर्चा करे, उपनिषद का, भागवत का, तब तो घंटों बैठे रहे। पर जहां स्पीकर लगाया अपने घर का, बोले चलो यहां जरूरत नहीं, यहां मुझे सुनना नहीं। और अपने कैलाश के जो 6वें मनेश्वर हो गए ना, सौराष्ट्र के थे विष्णु देवानी महाराज, उनका तो बड़ा कठोर नियम था मनेश्वर बनने के बाद भी कि कोई भी किसी की निंदा नहीं कर सकता। वे बोला करते थे कि कोई किसी की शिकायत करे, निंदा करे, तो 50% तो उस शिकायत करने वाले का दोष मैं मानता हूं, ऐसा बोलते थे। अब 50% है, 50 में से 25 तो हमारा है जो कि दुर्भाग्य से मैं सुन रहा हूं, इतना भागा। हम लोग सुबह सुबह बोलते ना, भद्रं करने भी श्रृणियाम देवा, कानों से बढ़िया सुनना तो फालतू शिकायत निंदा चुगली सुन रहे, और 25% तो जिसके विषय में कह रहा वह पता नहीं है कि नहीं, संशयास्पद है, पर 75% तो कन्फर्म पक्का है। इसीलिए वो किसी भी शिकायत को सुनते नहीं थे। वो बोलते थे कि संसार त्रिगुणात्मक गुण दोष से बना है, परिपूर्ण केवल एक भगवान ही है, इंसान परिपूर्ण कभी हो नहीं सकता है। सब में कमोन बेसी गुण दोष रहते ही है, तो क्यों किसी का दोष सुनना? सुनना है तो गुण सुनो। यदि आप किसी का दोष बार बार सुनेंगे तो वह भी आपके अंदर आ जाता है, और किसी के लिए अच्छाई सुनेंगे तो अच्छाई आती है। इसलिए पूज्य बड़े महाराज उनको बोला करते थे, विष्णुदेवानी महाराज, उनका ये नियम था कि हमेशा आत्मचर्चा करना। इसी को भगवान ने कहा परस्परम बोधयंता, जब भी चर्चा करें तो आत्मा की चर्चा करें। जब आत्मा की चर्चा करेंगे तो जीवन हमारा अमृत में सराबोर हो जाएगा। और संसार की कथा करके आप लोगों ने अनुभव किया होगा भाई, शब्द गुण है आकाश का, न्याय दर्शन का सिद्धांत है, शब्द गुण कम आकाश, शब्द गुण है आकाश का। जैसे फूल में सुगंधी गुण है, जहां फूल होगा वहां सुगंधी पना होगा, तो आकाश व्यापक है तो आकाश का गुण भी व्यापक है। तो किसी के विषय में हम कितना भी छिपकर कुछ बात कहेंगे ना तो निश्चित घूम फिर कर पहुंच जाएगा वहां, फिर खटपट शुरू हो जाएगा। इसीलिए किसी की अनात्म चर्चा ही नहीं करना। अच्छा, आत्म चर्चा करेंगे तो चूंकि आत्मा भी व्यापक है, सर्वत्र आत्मा को समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं, आकाशवत व्यापक नित्यश्च, तो आत्मा भी व्यापक है, आत्मा की चर्चा करेंगे तो निश्चित वहां से हमें सुख शांति की उपलब्धि होगी। अब चयन करना आपका है, साथ तो बदला दिया ना कि चाहे आप आत्म चर्चा करो चाहे अनात्म चर्चा करो। यदि आपको दुख चाहिए तो सीधा अनात्मालय खुला हुआ है संसार, और सुख चाहिए तो स्वनाम धन्य पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज ने आत्मालय खोल दिया है, प्रेमपुरी आश्रम। हमारे बीस भाई बोलते हैं ना हर दिन कि विश्व बने प्रेमपुरी। ये प्रेम जो है ना आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, स्वभाव है, तो हमें चुनाव करना है। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद जी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम गणालाहं त्वा गणपतिगुं हवावहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत।

नमः। ॐ तच्छयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तम्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अस्य हम लोग दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का आरंभ करेंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा और आनंद जयंती परम पूज्य प्रातस्मरणीय महाराज श्री का जन्मदिन कल है और गुरु पूर्णिमा गई अभी 3 तारीख को, तो इसके बीच में यही सोचा कि गुरु की ही स्तुति, गुरु तत्व की पहचान, यही सबसे उत्तम विषय रहेगा। भगवान शंकराचार्य द्वारा कई स्तोत्र की रचना है, पर सब स्तोत्रों में सबसे गंभीर, उत्कृष्ट और प्रचलित, जिसकी बहुत ख्याति है और जिसको लोग बड़े प्रेम से मंगलाचरण के रूप में भी नित्य प्रयोग करते हैं, ऐसा है ये श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। आप लोग प्रातस्मरणीय महाराज श्री को रोज सुनते हैं, आपने देखा होगा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, इस श्लोक का महाराज श्री ने जीवन भर मंगलाचरण किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है, इतने बड़े विद्वान फिर भी ये दक्षिणामूर्ति की स्तुति हर रोज करते थे महाराज श्री, इसलिए भी जो लोग यहां आते उनके लिए भी ऐसा, क्या महाराज श्री ने भी इस श्लोक में देखा जो उन्होंने बड़े प्रेम से मंगलाचरण के रूप में पसंद किया। ये सब बात इकट्ठी करके हमें इस श्लोक का आरंभ करते हैं। हमने एक पुस्तक महाराज श्री की छपवाई थी जिसमें महाराज श्री के द्वारा ये 3 श्लोक का अर्थ लिखवाया गया था, अभी मेरे पास ही नहीं मिल रही, और को तो क्या दो पर है, अगर मैं ढूंढवाऊंगा मेरे पुस्तक यहां वहां पड़े मिल जाएंगे, मेरे मन में तो सबको आप लोग को दूं तो एक फायदा होगा देखने के लिए। ठीक है,

भी यह स्तोत्र अध्ययन करने योग्य है। अब एक बात और देखिए, आप परंपरा से प्राप्त इस स्तोत्र के पूर्व 5 या 10 श्लोक इस स्तोत्र की स्तुति के लिए, स्तोत्र स्तुति करता है और स्तुति की भी स्तुति करने के लिए और दूसरा स्तोत्र है, उसको कहते हैं ध्यान श्लोक। अब आप इसको सुनिए, मेरे पास जेरोक्स नहीं कराया, कल हो जाएगा तो दे देंगे आपके। मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृशिकरणे आवृतम ब्रह्म निष्ठ आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुत्रमानंद रूपम स्वात्मा रामम मुदित वदनम श्री दक्षिणा मूर्ति मीडे। ये हो गया प्रथम श्लोक। श्री दक्षिणा मूर्ति ईडे, मैं भगवान सांब सदाशिव दक्षिणा मूर्ति को प्रणाम करता हूं, स्तुति करता हूं, भजता हूं। इतना ही है एक क्रियापद दक्षिणा मूर्ति मीडे। बाद में पूरे श्लोक में ये दक्षिणा मूर्ति के सब विशेषण है और कुछ नहीं, किस प्रकार के दक्षिणा मूर्ति उसका वर्णन किया है। तो कहते हैं व्याख्यानम मौन व्याख्या प्रगटिते पर ब्रह्म तत्व युवानम। व्याख्यानम करते हैं, कैसा उपदेश करते हैं, प्रकट करते हैं वेदांत के रहस्य को, किसके द्वारा? मौन के द्वारा। मौन व्याख्या तो प्रगटित कर पर प्रगटित, ये व्याख्यान के द्वारा जो छुपा हुआ अत्यंत रहस्यमय जो वेदांत का उपदेश है उसको प्रकट करते हैं। उपनिषद को रहस्य विद्या कहा है, गीता में भी 9वें अध्याय में राज विद्या राजकुह्यम पवित्रमिह विद्यते, ये विद्या में राज विद्या है, स्वप्रकाश है और विद्या में रॉयल विद्या भी है। और दूसरा लक्षण लगा दिया साथ में गुह्यम, गुह्यम माने जो छुपा के रखा गया है, सीक्रेट इंग्लिश में कहते हैं। एक बात होती है, कोई भी रहस्य हो किसी के जीवन के विषय में, वो न सुने तब तक ही अच्छा है। सब सुनते हैं सच्चे के झूठे किसी को मालूम नहीं है, पर अगर मालूम पड़ गया तो फिर मन में ग्लानी होती है, अरे राम राम, ये मिनिस्टर लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना पैसा विदेश में रखा है, हमने करोड़ रुपया देखा है नहीं, ये लोग करोड़ों करोड़ रुपए रखते हैं, इतने हजार इतने लाख करोड़, ये क्या बात है। तो कभी कभी तो होता है कि रहस्य न खुले वही अच्छा है। आपके शरीर के विषय में भी बहुत रहस्य है, वो तो जब जांच होती है पैथोलॉजिकल खून की तब वो रहस्य खुलता है, वो भी अच्छा नहीं है देखने में, डायबिटीज है, ये है, वो है, कोलेस्ट्रॉल है। तो मैं तो मानता हूं हमेशा कि कोई कहते महाराज जी मैं आपको रहस्य बताने जा रहा हूं, मैंने कहा रहस्य को रहस्य ही रहने दो, क्योंकि जानने से कोई बड़ा आनंद होता नहीं है, जो थोड़ी भी श्रद्धा है वो टूट जाएगी, जो थोड़ा भी भाव बना है वो टूट जाएगा।

0: इसलिए रहस्य को रहस्य रहने देना अच्छा है। तो महाराज भगवान दक्षिणा मूर्ति ये रहस्य का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? प्रकटिति पर ये रहस्य की विशेषता है, क्या है? ये ज्ञेय है। और अशुभा संसारात मुच्यते, यह अशुभ संसार से मुक्ति देने वाला रहस्य है। और इसको जानने के बाद और कुछ जानना रहता नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम, टॉप सीक्रेट। अब एक दूसरा है रहस्य की बात, मैं आपको रहस्य बता दूं, बाद में वो रहस्य नहीं रहेगा, है कि नहीं? रहस्य रहस्य कब तक रहता है? जब तक न बताओ तब तक रहस्य है। पर ये ब्रह्म तत्व का रहस्य ऐसा है कि बताने पर भी रहस्य ही रहता है, ऑन टेलिंग ऑल्सो। इतनी अच्छी तरह से उनको निरूपण किया गया तो भी उनकी समझ में आया नहीं। ये महाभारत में कई कूट श्लोक है। कूट श्लोक माने कि जो समझना रहस्य है। विदुर जी बोलते हैं, व्यास जी कहते हैं, बड़ी सभा में विदुर जी बोल देंगे, सब लोग सुनेंगे, पर युधिष्ठिर महाराज समझ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? कूट श्लोक। इसी प्रकार से ये जो रहस्य है वो प्रगटिति परब्रह्म तत्त्वम युवानम्। प्रगटिति, जो छुपा हुआ रहस्य था ब्रह्म विद्या का, उनको अच्छी बली बाति जिज्ञासु के सामने प्रकट करते हैं। अधिकारी है तो समझ जाएगा, और जो समझ जाएगा वो अधिकारी है। दोनों ओर से कौन सा रहस्य प्रकट करते हैं? परम ब्रह्म। परम च ब्रह्म च ब्रह्मं च परम ब्रह्म। जो परम है मानी देश काल और गुण से अतीत है, और जो व्यापक है अनंत है, वो परब्रह्म का जो तत्व है, स्वरूप है, उसको प्रकट करते हैं। कौन कौन प्रकट करते हैं? दक्षिणामूर्ति। कैसे प्रकट करते हैं? अभी एक और रहस्य, मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्त्वम युवानम्। मौन व्याख्या, मौन व्याख्या, मौन व्याख्या शब्द कर देखिए आप। यहां आप देखेंगे प्राय लोग गड़बड़ा जाते हैं और बड़ा प्रवचन करेंगे, मौन ही व्याख्या है, मौन में ही व्याख्यान हुआ। इसका अर्थ क्या हो गया? वो तो समझ, जो बोलने वाला तो समझता नहीं है, और हमको समझाने का प्रयत्न करता है जो समझना मुश्किल है। अगर मैं कहूं आज मैं मौन हूं और फिर व्याख्यान हो रहा है तो क्या होगा? एक घंटा में चुपचाप बैठा रहूंगा। मौन व्याख्यानम उपनिषद है, मानी एक पेज, एक पन्ना उपनिषद का कुछ छपा हुआ नहीं होगा। मौन ईशावास्य वन पेज, मुंडक उपनिषद दो पेज, ऐसे। व्हाट इज ए मौनम? मौन का अर्थ होता है वांग निरोध। जब हम एक शब्द का भी उच्चारण न करें, वांग निरोध हो जाए, उसका नाम है मौनम। आज ये मौन धारण किया है। और दूसरा है व्याख्यानम, जिसमें अच्छी भली भली बाती विषय को समझाया जाता है। गुजराती में सरस शब्द से छणावट करवामां आवे, विषय का अच्छी भली निरूपण किया जाता है, उसको कहते हैं व्याख्यान। ख्या में प्रकट करना, ख्याति। अब आप देखिए, मौन और व्याख्यान शब्द का अर्थ बारंबार आएगा स्तुति में, इसलिए चित्रम वटतरोर मूले वृत्ता शिष्य गुरोर युवा गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। गुरु ने मौन व्याख्यान किया और शिष्य के सब संशय दूर हो गए। संस्कृत में एक कहने का होता है वदतो व्याघातः। वदतो व्याघात का अर्थ होता है जब हम कह रहे हैं तब भी विरोध हो रहा है, बोलने में भी विरुद्ध दिखता है। मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, मैं बोल के कहता हूं मम मुखे जिह्वा नास्ति। आपको ये जोक मालूम होगा, एक अंधा भीख मांगता था। एक भाई हर रोज एक रुपया देते थे। एक दिन वो दिखा नहीं, तो एक दूसरा आदमी वहां खड़ा था बोर्ड लगा के कि मैं गूंगा हूं, मुझे पैसा दीजिए। गुंगवाने बोलता नहीं हूं, तो उन्होंने पूछा एक रुपया देते हुए नए आदमी को कि वो अंधा कहां गया है। तो गूंगा बोला कि वो फिल्म देखने गया है। डबल गूंगा बोला और अंधा पिक्चर देखने गया है, देखने गया है, सुनने नहीं गया है, सुनने को भी जा सकता है। तो डबल, तो गूंगा होगा सो बोलेगा नहीं, अंधा होगा सो देखेगा नहीं, जो मौन होगा वो प्रवचन करेगा नहीं। हमको मौनी बाबा बहुत अच्छा लगता है। इसका कारण क्या है मालूम है? इनको कितना मालूम है, नहीं मालूम ही कभी मालूम ही नहीं पड़ता है ना। बहुत फायदा है, मौनी रहो, चुपचाप बैठे रहो, आपका सब आदर करेंगे। हाँ, मौन सर्वअर्थ साधकम। आप चुप लगा दीजिए, बहुत काम होगा। घर में जाके खास कोई बड़ी गड़बड़ हो रही, चुप रहिए तो बहुत काम हो जाएगा। मौनम सर्वअर्थ साधकम। ये क्या बात है मौनम और व्याख्यानम, और वो भी स्तुति के रूप में है। यहां समझना है कि समग्र वेदांत का जो विषय जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, जीवेश्वर यो हो ऐक्यम, आपके विषय में जो रहस्य है, आप जो अपने को मान रहे हैं वो नहीं है, आप जो है वो आपको कभी भी मालूम ही नहीं है। महाराज श्री एक दिन हमको कहा, खंडा जी महाराज ने, मैं तुझे जो दिख रहा हूं वह मैं नहीं हूं, मैं तुझे जो समझा रहा हूं वो मैं हूं। दोनों में फर्क है। आप अपने विषय में जो मान्यता धारण किए हुए हैं कि मैं छोटा मोटा आदमी, इतने वजन वाला, इतनी उम्र वाला, ये सब गलत पुरवार होने वाला है। ठीक है, आइए। तो रहस्य जो है अपने आपा के विषय में, जो ब्रह्मत स्वरूप हमारा है वो इस समय हमारे लिए अज्ञात है, हम जानते नहीं है। अब जो सद्गुरु है वो उस ब्रह्म स्वरूप के बोध के लिए, अवबोध के लिए, प्रबोध के लिए शास्त्र प्रमाण के द्वारा हमें उपदेश करते हैं, करता है। अब आप थोड़ा और विचार करिए, भगवान ने हमें पांच ज्ञानेंद्रिय दी है और ये पांचों ज्ञानेंद्रिया के साथ जब मन रहता है और ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो अगर सामने है तो हमको ये पांचों विषयों का ज्ञान मन में होता है। रूप का ज्ञान, रंग का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, संगीत का ज्ञान होता रहता है। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम। अक्षम यानी इंद्रिय चक्षु, हर एक इंद्रिय से जो विषय क्रिया जाता है, इंद्रियों का विषय बनता है, जिसको हम यह के रूप में जान सकते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अब कहा गया है ज्येष्ठ प्रमाणम, प्रत्यक्षम ज्येष्ठ प्रमाणम। सब प्रमाणों में ये सबसे मुख्य प्रमाण है, क्योंकि अनुमान भी किया जाएगा वो भी प्रत्यक्ष मूलक होता है और प्रत्यक्ष जनक होता है। आपने देखा धुआं आ रहा है पर्वत से, तो आप अनुमान करेंगे कि नीचे अग्नि है और जाके देखेंगे कि वहां अग्नि मिल भी जाएगा, तो धुआं का जो अनुमान है और जो उसका फल है वो अनुमान मूलक, प्रत्यक्ष मूलक, क्योंकि पहले हमने अग्नि और धुआं को देखा है प्रत्यक्ष मूलक है, और बाद में जाएंगे तो प्रत्यक्ष जनक भी हो जाएगा, अग्नि दिखेगा हमको, आवाज देख के हम निकल जाते हैं, रिक्शा का आवाज है, रिक्शा को नहीं देखते हैं, सुनते हैं आवाज और अनुमान करते हैं क्या रिक्शा, और पीछे घूम के देखते हैं रिक्शा, घंटी बजाते हैं कौन, मैं कौन, मैं हां समझ गए साहब आ गए घर में, आवाज से पहचान जाते हैं कि अपने पति परमेश्वर आए, दरवाजा खोलने पे वही मिल जाते हैं। तो प्रत्यक्ष मूलक होता है अनुमान, और जितने भी है उपलब्धि अर्थापत्ति उपमान, ये सब प्रमाण शब्द, ये सब प्रमाण है, मुख्य प्रमाण कौन सा है, प्रत्यक्ष है। अब आप देखिए प्रत्यक्ष सबका बाद में हो ही जाता है। मैं आपको फ्लावर वैली की बात करो हिमालय में, जब बहुत फूल खिलते हैं अमुक सीजन में, मैं आपको शब्द से सुना सकता हूं, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको कहूं ये चीज कैसी दिखती है, उसका भी आपको दृष्टांत के द्वारा अनुमान में करा सकता हूं, उपमा देके। बहुत बार कहते हैं ये चीज ऐसी दिखती है आप ले आओ, ये आदमी ऐसा दिखता है आप उनको जाके बात करो, उनका नाम माधु भाई है, मालूम पड़ जाएगा। चीज का न होना भी, कभी कभी गले में माला नहीं है ये कब मालूम पड़ता है, माला है और इसका गले में अभाव है। तो अनुमान उपमान अर्थापत्ति माने बहुत पानी नदी में आ गया है तो आगे वर्षा हुई होगी, यह हो गया क्या अर्थापत्ति। अन्यथा अनुपपत्तो अर्थापत्ति, यहां तो वर्षा नहीं गिरी है, इतना पानी आएगा कैसे, या तो बांध टूट गया है, टहरी बांध टूट गया है, या तो वर्षा ज्यादा हुई है, इसको क्या कहते हैं अर्थापत्ति। ये दिवस दिन में भोजन नहीं करता है पर वजन बढ़ता जाता है क्या रात को खाता है डब्बा खोल खोल के। और गुजरा यहां तो बंबई में बहुत अच्छा खौदरा गली में जाता है रात को, खौदरा गली से ना खौदरा गली में खौदरा हो जाए दरअसल तो ये सब अनुमान प्रत्यक्ष मूलक है और प्रत्यक्ष जनक है, आखिर फलक हो जाएगा, प्रत्यक्ष फलक हो जाएगा। तो आपका और हमारा जितना भी ज्ञान है, संवित जिसको कहते हैं, जितनी समझदारी है, ये प्रत्यक्ष से ही प्रकट हुई है। कुछ चीज ऐसी है जिसका कभी प्रत्यक्षीकरण हो नहीं सकता, न कभी यह के रूप में वो दिखता है और फिर भी है पर दिखता नहीं है। इसलिए छह प्रमाण जो मेरे पास है, मैं जान लो सीधे, उसका अनुमान करो, उसकी उपमा दो, ये सब नहीं हो सकता है। ऐसा जो वस्तु है इसको कहते हैं, ये हमारे जाने हुए प्रमाण से अगोचर है। अगोचर है माने उसके द्वारा उसको जान नहीं सकते हैं। पर एक बात यह है, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अशुभात् संसारात् मोक्षसे, अशुभ संसार से तो मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञेय तत्व की मैं आपको चर्चा सुनाता हूं। तो ऐसा भी है जो प्रमाण जो हमें ज्ञात है प्रत्यक्ष आदि के द्वारा ज्ञात नहीं है, फिर भी जिसका ज्ञान प्राप्त करना है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: परमश्रद्धेय प्रातस्मरणीय प्रेमपुरी अध्यात्म विद्यापीठ के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज तथा परमश्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंतश्री विभूषित महाराज श्री के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान परम शुद्धय परम आदरणीय परिव्राजक मनोवृत्ति से विचरण करने वाले स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए भगवान के परम भक्तगण श्रोतागण साधकजन बालक नचिकेता भारतीय संस्कृति के प्रतीक आध्यात्मिक जीवन की पृष्ठभूमि वेदांत के अधिकारियों के सारे लक्षण जिनमें विद्यमान हैं ऐसे हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद सो अमन्यत श्रद्धा आविवेश। श्रुति कहती है कि उनमें श्रद्धा का आवेश आ गया। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा का बड़ा मूल्य है। श्रुति कहती है श्रद्धा के संदर्भ में, तात श्रद्धस्व, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। तीन बार श्रुति ने कहा श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। एक बार नहीं कहा, तीन बार कहा श्रद्धा करो, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। क्योंकि हमारे जीवन में जो अध्यात्म का पथ है वो दुर्गम होते हुए हमारे लिए परोक्ष है, और जो चीज परोक्ष होती है उसके बारे में तो आपको श्रद्धा ही करना पड़ता है। गीता जी में भी श्रद्धा की बात कही बहुत जोर शोर से, हर जगह पर भगवान ने कहा श्रद्धा। और यहां बालक नचिकेता के मन में भी अगाध श्रद्धा शास्त्र के ऊपर, अगाध श्रद्धा अपने पिता के ऊपर भी है, लेकिन उस श्रद्धा के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है। आज ये सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी अनुचित गायों का दान दे रहे हैं तो अनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति ताददत्। ऐसी गायों का दान देकर इनका उद्धार होने वाला नहीं है। पिता के उद्धार की भावना, ये उनका पितृ प्रेम है। और अनुचित कर्म से विरत कर सन्मार्ग दिखाने की जो भावना है ये उनकी आस्तिकता है, ये उनकी श्रद्धा बुद्धि है। और सो अमन्यता सोचने लगे, अब वो क्या सोचने लगे तो कहती है श्रुति, पीतो दका जगधत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति ताददत्। अब उन गायों के बारे में सोचने लगे वो, मेरे पिताजी जिन गायों का दान दे रहे हैं वो गाय कैसी है, दुग्ध दोहा जगधत्रिणा पितो दका। अब वो गायों का एक एक गायों की तरफ देख देख के बोल रहे हैं, ऐसी जर्जर गाय जो अभी गिरने को है और उसको उठा करके पकड़ करके खींचते हुए लोग ला रहे हैं। ये पीतोदका और जगदत्रणा ये दोनों एक साथ जोड़ दीजिए, अथवा आप अलग अलग जोड़ दीजिए। उसका अर्थ है कि जिन्होंने अंतिम बार पानी पी लिया है, जिन्होंने अंतिम बार घास खा लिया है, माने ऐसा समझ लीजिए कि अब वो दोबारा न पानी पीने वाली हैं और न घास खाने वाली हैं, माने बिल्कुल अब मरणासन्न, जब बैठ जाए तो उठे नहीं है। और ऐसी गायों को भी लोग ले आए वहां देने के लिए। और कुछ ऐसी गायें हैं वो ठीक ठाक तो है लेकिन निरिंद्रिया, अब वो दोबारा बछड़ा देने वाली भी नहीं है। और दुग्ध दोहा जिनका दूध निकाल दिया गया, ऐसी दुग्ध दोहा। अब यहां दुग्ध दोहा का अर्थ होता है निष्प्रयोजन, क्योंकि गाय का जो प्रयोजन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन तो दूध ही है। आप गाय का दान दे रहे हैं या ले रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है, पंचगव्य, यही तो प्रयोजन है। दूध निकलेगा उससे फिर आप मक्खन निकालेंगे, फिर घृत निकलेगा, फिर यज्ञ करेंगे, स्वयं ग्रहण करेंगे, उसका प्रयोजन तो दुग्ध है। लेकिन वो देख रहे थे कि गायों के स्तनों में दूध नहीं था, दुग्ध दोहा, या तो दूध निकाल लिया था अथवा उनके स्तनों में दूध था ही नहीं। आज वो यही बात सोच रहे हैं, क्योंकि आप जब दान करते हैं ना तो सर्वप्रथम दान का महत्व है, लेने वाला व्यक्ति देखते ही प्रसन्न हो जाए। पहला जो प्रयोजन है ना वो ग्रहीता की प्रसन्नता, आप जब कोई चीज दे रहे हैं और ग्रहिता का मुखमंडल प्रसन्न न हो तो आपका दान, इसलिए सबसे पहला जो प्रयोजन है वो ग्रहिता की प्रसन्नता, वो जैसी चीज देखी प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और आप गाय का दान दे रहे हैं तो बिल्कुल गाय के स्तनों में दुग्ध भरा हुआ हो और ग्रहिता देखते ही प्रसन्न हो जाए, वाह क्या गाय दूध देने वाली है, बहुत दूध देने वाली है। लेकिन सभी गायों का दूध निकाल दिया गया था, वो यज्ञ में निकाल लिया होगा, ऋषि ने संकेत कर दिया होगा दान तो करना ही है, लो सब दूध निकाल लो। ये कर्म की विगुणता वैगुण्य ये न्यूनता थी। और वो बालक नचिकेता गिना रहे थे वो, और वो सोच भी रहे थे कि शास्त्र से सुना और पिता से भी तो सुना, यही तो सुना, ऐसा दान तामस दान है, ये तो राजस दान, सात्विक दान तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसी गायों का दान मेरे पिताजी देंगे तो उसका फल तो मिलने वाला नहीं। आनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति ताददत। अब ऐसे अनुचित गायों का दान देकर मेरे पिताजी कहां जाएंगे? आप यहां दो चीजें बालक नचिकेता कहना चाहते हैं। ये जो विश्वजीत यज्ञ मेरे पिता ने किया है इसके दो ही प्रयोजन हैं। या तो ये स्वर्ग जाना चाहते हैं या तो संन्यास लेना चाहते हैं, क्योंकि ये यज्ञ संन्यास लेने के पहले भी किया जाता है। जैसे आपको संन्यास लेना है, यद अहरेव विरजित तद अहरेव प्रव्रजत। आपके मन में यदि वैराग्य हो जाए तो उस समय आपको सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए। और मान लीजिए कि आपको संन्यास लेना है और आपको तैयारी करना है संन्यास लेने की, तो आप विभाजन कीजिए, आप अपने संपत्ति का विभाजन कीजिए, कुछ हिस्सा पत्नी के नाम बराबर कीजिए, लेकिन कुछ हिस्सा आप अपने बच्चों के नाम, और आप अपने हिस्से में भी रखिए, आप ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही उनको दे, आप थोड़ा अपने हिस्से में भी रखिए, और फिर अपने हिस्से में जो है ना वो सब कुछ दान कर दीजिए। ये संन्यास लेने की परंपरा है। और बालक नचिकेता सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी ने बंटवारा तो किया है, लेकिन बंटवारा कैसे किया है? जो अनुचित गायें हैं वो अपने हिस्से में ली हैं, दान दिए, और वो अनुचित गायों का वो दान कर रहे हैं। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो है परिव्राजक, संन्यास लेने, और संन्यास लेने का प्रयोजन और प्रारंभ में ही आसक्ति, तो ये तो संन्यास लेने के बाद भी वापस आएंगे, और वापस न भी आए तो ये निरंतर ये मेरा चिंतन करेंगे, निरंतर मेरे बारे में सोचेंगे कि नचिकेता क्या करता होगा नचिकेता का जीवन कैसा होगा, गृहस्थाश्रम उसका कैसा चलता होगा। और यही भाव है आनंदा नाम ते लोका, इनका संन्यास भी आनंदपूर्ण नहीं बनेगा, इनका संन्यास आनंदपूर्ण नहीं बनेगा। और यदि स्वर्ग की भावना है तो भी स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। आनंदा, आनंदा का अर्थ है न नंद इति आनंद, यति आनंद यति इति नंद, जो आनंदित हुआ जाता है अथवा दूसरे को आनंद दिया जाता है उसको नंद बोलते हैं। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहां नंद का भी अर्थ यही है, नंद माने नंदयति, दूसरे को परान आनंदयति, आनंद कर, जो स्वयं आनंदित होकर दूसरे को आनंद प्रदान करे वो नंद है। और यशोदा भी ऐसी है, यशम ददाति इति यशोदा, जो दूसरे को यश, दूसरे को परमात्मा, यश माने परमात्मा भी होता है, यश माने श्रेय भी होता है, जो दूसरे को श्रेय प्रदान करे, ये नंद और यशोदा ये जोड़ी बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत जोड़ी है, अपना प्रसंग नहीं है ये, नहीं तो धाराएं अलग हो जाएगी। अब यहां नंद शब्द का अर्थ होता है आनंद, और न नंद इति आनंद, ये कहते आनंदा नाम ते लोका, मैंने दुखपूर्ण लोक को मेरे पिताजी पहुंच जाएंगे। तान स गच्छति ता ददत। अब वो सोच करके फिर अब वो इशारा करना चाहते हैं अपने पिता को। क्या इशारा करना चाहते हैं अब आप ध्यान देके सुनना। यहां वे इशारा करना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आज यहां बालक नचिकेता सोचते हैं मुझे इशारा करना है। किसको इशारा करना है? पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आज मुझे एक देवता को इशारा करना है, एक गुरु को इशारा करना है, एक पिता को इशारा करना, अपने से श्रेष्ठ परम ज्ञानी ऋषि, और उनको मुझे इशारा करना है, उनको गलती दिखाना है। आज बालक कोई सामान्य नहीं है, वो सोचते कि गलती दिखाने के चक्कर में कहीं मैं गलती न कर जाऊं। अक्सर आदमी ऐसा ही तो करता है, बड़े आदमी को गलती दिखाने के चक्कर में वो स्वयं गलती कर जाता है, तो उसका क्या हुआ मतलब? फिर आप दूसरे को कीचड़ से निकालना चाहते हैं और निकालने के चक्कर में आप स्वयं ही फंस गए, तो आपका निकालना ही व्यर्थ है ना। आप नहीं निकालते तो ही अच्छा था। इसके बारे में बड़ा सुंदर भाव महर्षि अरविंद कहते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी डूबते हुए व्यक्ति को निकालना चाहते हैं, उसका अर्थ यह है कि आपको बचना चाहिए। उसकी सार्थकता इसमें कि आपको बचना चाहिए। आप डूबते हुए आदमी को निकालना चाह रहे थे और निकालने के चक्कर में आप भी डूब गए, तो उसका अर्थ क्या रहा फिर? हाँ, वो प्लस में आया कि माइनस में? आप बचाना चाहते थे, माने आप फायदा चाहते थे, जीवन को बचाना चाहते थे, और बचाने के चक्कर में स्वयं डूब गए, तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ? घाटा ही हो गया। अब यहां बालक नचिकेता भी सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, बड़े आदमी को कभी गलती दिखानी नहीं चाहिए। ध्यान देना, आपको मालूम भी पड़ जाए कि बड़ा आदमी गलत कर रहा है ना, तो उस समय चुपचाप बैठ करके सुनते रहना चाहिए। कोई बड़ा आदमी अगर गलत बोल रहा हो तो तब भी आपको चुपचाप बैठ करके सुनते रहना चाहिए। क्या बड़े आदमी को मालूम नहीं पड़ता है क्या कि मैं गलत कर रहा हूं? उससे क्या हमसे ज्यादा बेवकूफ है वो? बड़े आदमी को भी मालूम है ये मैं गलत बोल रहा हूं, उनको भी मालूम है गलत कर रहा हूं, इसलिए छोटे आदमी को इशारा नहीं करना है। और करना भी चाहिए तो उसकी विधा अलग है, उसका इशारा अलग है, और बालक नचिकेता से सीख लेना चाहिए कि वो इशारा क्या है। और बालक नचिकेता अपने पिता को ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो बालक नचिकेता कहने लगे, कस्मै माम दास्यसीति, द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्वे त्वाम ददामीति। अब आप ध्यान देना शब्द के चयन पर। आपकी भगवती श्रुति जो शब्दों का चयन करती है ना, वो सूत्रात्मक और बहुत गंभीर भावों का प्रदर्शन करती हुई उन्होंने अपने पिता को कहना प्रारंभ कर दिया। यहां कस्मै माम दास्यसी, आप मुझको किसको दे रहे हैं, माने आप मेरा दान किसको कर रहे हैं? आज बालक नचिकेता दान की बात कह रहे हैं, और वो दान किसके दान की? स्वदान की। और दुनिया में बहुत सारे दान है। दान का मतलब समझते हैं ना? दान का मतलब होता है दाता अपने स्वत्व को हटाकर ग्रहिता के स्वत्व को निर्मित करता है। आप जब कोई चीज दान कर देते हैं ना, तो जब तक आपके हाथ में है ना, जब तक आपका संकल्प नहीं हुआ तभी तक आप की हैं, और जैसे ही वो चीज आप दान कर चुके होते हैं, संकल्प कर चुके होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आपका अधिकार रहता है कि नहीं? उसके बाद फिर आपका अधिकार नहीं रहता है, वो ग्रहिता का अधिकार हो जाता है, स्वत्व उसका निर्मित हो जाता है। अब आप इतना भी नहीं कह सकते कि ये मेरा था, ये भी नहीं कह सकते, ध्यान देना। इसलिए आपने यहां तो ये नेम वो लगाते हैं नहीं कि नहीं है। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे वो भी ठीक है, नहीं करने की अपेक्षा करना है भैया, थोड़ा माता पिता की स्मृति में लगा देते हैं। अपने आश्रम में कहीं नहीं है, आनंद वृंदावन चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में कहीं पर भी नेम नहीं किसी का। तात्पर्य आप जब दान करते हैं ना तो वहां अपना स्वत्व नहीं रहता है, वहां ग्रहिता का स्वत्व निर्मित हो जाता है। और दान के लिए आपके जीवन में निरासक्ति का होना बहुत आवश्यक है, निरासक्ति के बिना दान संभव नहीं। और दान का सर्वोच्च जो प्रयोजन हमारे जीवन में है ना, वस्तुतः दाता को निरासक्ति में ले जाना ही है। आप दान करते धन का तो आपकी वो दान की प्रवृत्ति धन की आसक्ति को कम करता है। आप दान करते हैं धन तो धनासक्ति कम होती है, आप स्वर्ण दान करते हैं तो स्वर्णासक्ति कम हो जाती है, आपको सोना बहुत अच्छा लगता है, आप सोने का संग्रह करते हैं, परिग्रह करते हैं और उस परिग्रह वृत्ति को आप नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो आप सोना दान कर दीजिए। आपके जीवन में वस्त्रासक्ति हो तो आप बहुत वस्त्र के प्रति पागल है, आया हुआ कपड़ा बांध के रखते, पहने तो हैं, पहनते तो नहीं लेकिन बांध के रखते हैं, और उस आसक्ति पर नियंत्रण करना है तो शास्त्र कहता है कि आप वस्त्र का दान करो। और कैसे वस्त्र का दान? जैसा आप पहनते हैं और आप जो पहनते वो दान करो तो ज्यादा अच्छा है, ये तो आप थोड़ा त्रुटि ला लेंगे। जैसा आप पहनते हैं वैसे, आपको भोजन में ज्यादा आसक्ति हो तो भोजन का दान करो, दूसरे को खूब खिलाओ, नहीं तो आसक्ति भोजन में होगी ना तो दूसरे को नहीं खिला सकता आदमी। ऐसे लोगों को हमने देखा खाने में कि दूसरे को थोड़ा सा भी दे सकते नहीं, भले सड़ जाए, भले ही सड़ जाए वो स्वयं ना खाए लेकिन इतनी आसक्ति वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए आप अपने भीतर की आसक्तियों को छोड़ना चाहते हैं, आसक्ति पर यदि नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप दान करना सीखो। ये दान जो है ना, ये बहुत गहरे अर्थों में आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं है, आपको न वैकुंठ ले जाने के लिए है, न आपको लोक लोकांतर के सुधारने के लिए है, ये तो आपके भीतर निरासक्ति, अपरिग्रह, वैराग्य की मनोवृत्ति निर्मित करने के लिए ही दान शास्त्र ने कहा है। लेकिन आम आदमी के लिए दान में प्रवृत्त करने के लिए कहा जाता है भैया दान करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये प्रलोभन है। स्वर्ग का प्रयोजन जो दिखाया जाता है ये तो केवल विज्ञापन है, एडवर्टाइज जैसा है। आप सुनते कि नहीं कि कोई आदमी बूढ़ा आदमी है और एक च्यवनप्राश चम्मच एक चम्मच खा लेता है और खाते ही जवान हो जाता है, आप टीवी में देखते कि नहीं, च्यवनप्राश खाओ और जवान हो जाओ, और वो चम्मच खाते ही ऐसे तगड़ा हो जाता है, लड़ने के लिए तैयार। तो वो तो एडवर्टाइज है, वो तो विज्ञापन है, विज्ञापन। और उस विज्ञापन का इतना ही तात्पर्य है कि आपको च्यवनप्राश खाना चाहिए, ऐसे आपको थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए शास्त्र कहता है कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो दान करो। लेकिन यहां निरासक्ति आसक्ति को घटाने के लिए ही आपको दान करने को कहा है। इसलिए दान है ये भूदान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान, ज्ञान दान, ये भी दान है। और सर्वोच्च जो दान है ना, यहां तो भैया आत्मदान। आज बालक नचिकेता वैराग्य के बिना दान संभव नहीं, और बालक नचिकेता कौन से दान की बात कर रहे हैं? कस्मै माम दास्यसी, आप मुझको किसको दान कर रहे हैं? ये सर्वोच्च वैराग्य की भावना, पिताजी आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात हो गई। एक बार उन्होंने बोल दिया और चुप हो गए, बैठे और कुछ सोच रहे हैं कि प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं, सुना कि नहीं। सुन तो लिया था पिता ने, सुन तो लिया था। और उन्होंने क्या बोला था? कस्मै माम दास्यसी। और वो सुनते एकदम गुस्से में आ गए पिताजी, सोचने लगे क्या हो गया, अरे दान मेरे पुत्र का, और जिसके लिए ये गायें अभी मैं एकत्रित करके जमा करके रखा हूं, इतना पुत्र मो एकलौते एक बालक, और ये क्या बोल रहा है, कसम मामदास, मुझे किसको दान नहीं, ये क्या दान देने की चीज है। और सबसे ज्यादा प्रिय चीजें, आज सबसे ज्यादा प्रिय चीज महर्षि उद्दालक के लिए है बालक नचिकेता। और बालक नचिकेता अपने दान की बात जब कहते हैं तो उनको बड़ा क्रोध आया, अंदर से बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन चुप सहन कर लिया। द्वितीयम दोबारा बोला, ओ तब भी उन्होंने सहन किया। आज जैसे तृतीयम तीसरी बार जब उन्होंने बोला कस्मे माम दास्यसी, एकदम क्रोध में आ गए और गुस्से में आकर के बोला मृत्वे त्वाम ददामि, जाओ तुमको मृत्यु को दान दे देता हूं। कितना गुस्सा आया होगा। ये द्वितीयम तृतीयम तम होवाच, ये हमारे भीतर जो काम क्रोध लोभ ये चीजें है ना, इसकी तीन स्तर की अभिव्यक्ति होती है। सबसे पहले हमारे मन में काम क्रोध लोभ की लकीरें उठती हैं सबसे पहले, और वो केवल स्वसंवेद्य आपको मालूम पड़ते हैं। आप कितना क्रोध में आए, आपके मन में कितना काम उठा, आपके मन में कितना लोभ उठा, ये आपके मन में है, आपको मालूम पड़ा। और द्वितीय स्तर की जो अभिव्यक्ति है वो अपने तन पर, पहले मन पर और दूसरे नंबर पर आपके तन पर, फिर आपका चेहरा एकदम तमतमाने लगता है, ओंट फड़फड़ाने लगते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आप। और तीसरे नंबर जब क्रोध की अभिव्यक्ति होती है तो वह आदमी तक पहुंच जाती है। ये तीन स्तर हैं, भावाभिव्यक्ति के तीन स्तर हैं। पहला स्तर मन, दूसरा स्तर तन, और तीसरा जो तन है, स्तर है, ये विषय है। अब आपका क्रोध बाहर हो गया, आपका काम बाहर हो गया, आपका लोभ बाहर हो गया, वहां तक पहुंच गया, आप वस्तु उठाएंगे। अब आपके मन का लोभ वस्तु तक पहुंच गया है, अब आप उस वस्तु को उठा लेंगे। और इन भावों की सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितना इसको हम क्रिया देते हैं ना उतना ये ज्यादा गहरा हो जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां दो चीजें आपको बहुत ध्यान देकर श्रवण करनी चाहिए। आप जितना क्रिया देते हैं उतना ही आपका भाव गहरा हो जाता है, एक। और दूसरा सूत्र है, क्रिया के बिना भाव व्यक्त होना संभव नहीं है। आपके मन में क्रोध, आपके मन में काम, आपके मन में लोभ उठा, और उठने के बाद वो बाहर नहीं आता है। आपके मन में जब क्रोध आया तो बाहर आता है क्या? वो नहीं आता है। बाहर आने के लिए वो माध्यम चाहता है, बाहर आने के लिए साधन चाहता है, क्रोध आश्रय चाहता है, बिना आश्रय क्रोध बाहर नहीं आता है। आपके मन में बहुत क्रोध उठा, आप क्या करोगे? आप उस समय चाहोगे कि मैं क्रोध को बाहर करूं, और क्रोध को बाहर करने के लिए आप माध्यम चाहेंगे, शब्द अथवा क्रिया।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।